शुभ सवेरा, नमस्कार। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज मंगलवार है, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 2री तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। इस समय 7:04 और 10 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, यूं तो आंकड़े बता रहे हैं कि जून के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी शुक्राना इस बात का कि बारिश शुरू हो रही है। ऐसे समय में जबकि भीषण गर्मी के बाद पानी का महत्व, जल का महत्व हर मन तक पहुंचा है, हर इंसान जान चुका है कि जल जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस धरती का तापमान भी बढ़ता है, जीव जंतुओं को भी तकलीफ है, मनुष्य को तो तकलीफ है ही, तो जल के महत्व को पहले ही समझें। बारिश के रिमझिम फुहारें आपके घर आंगन को भिगोएं, उसके पहले आप इस बात को बार बार बार बार दोहराएं कि जल जीवन है, जल धन है, इसका संरक्षण हम सबका दायित्व है। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन यही कि इस बारिश बहुत से पौधे लगाएं, न सिर्फ पौधे लगाएं बल्कि उन्हें सींच कर, उनकी देख रेख करके उन्हें बड़ा भी करें, ताकि पेड़ बादलों को बुला लाएं और धरती हमेशा हरी भरी रहे। इसके साथ ही पानी का दुरुपयोग कम करें, जल संरक्षण करें, पानी बोएं, यही समृद्धि का बोना है। तो इसी संदेश के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम आए हैं आज के इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में।

अब से थोड़ी देर बाद आप जीवन सौरभ कार्यक्रम सुनेंगे, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर भक्ति संगीत। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम होगा, इसमें आज बात होगी केदारनाथ अग्रवाल की। हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे होगा। 9 बजे योग संवाद कार्यक्रम में चर्चा होगी वृद्धावस्था एवं काल के स्वरूप के विवेचन पर। 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 11 बजे। और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। बने रहिए रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: मनीषी जिलानी रात्रि के पहले पहर में राज्य के आदेश अनुसार एक पुस्तक लिखा करते थे और चौथे पहर को वह अपनी पूजा आराधना में लगाते थे। दोनों काम वे रात में ही किया करते थे। उनके पास दो दीपक थे। जब पुस्तक लिखते तो एक दीपक जलाते और जब पूजा का समय आता तो दूसरे दीपक को जलाया करते थे। एक मित्र ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया, पुस्तक राज्य के लिए लिखी जाती है इसलिए इसमें तेल राज्य का जलता है और पूजा मेरी व्यक्तिगत है, इसमें निजी तेल जलाता हूँ। सत्कर्म तो तभी सफल होता है जब वे सच्चे मन और धर्म उपार्जित साधनों से संपन्न किए जाएं।
1: जीवन सौरभ।
3: न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूँ चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 152 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं मित्रा वरुण, छंद है त्रिष्टुप।
3: युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे, युवो रच्छिद्रा मंतवो हसर्गाः, अवातिर तमनृतानि विश्वरितेन मित्रा वरुणा सचेथे। हे मित्र वरुण देवो, आप दोनों परिपुष्ट होकर तेजस्वी वस्त्रों को धारण करते हैं। आपके द्वारा रचित सभी वस्तुएं दोष रहित और विचारणीय हैं। आप दोनों असत्यों का निवारण कर मनुष्यों को सत्य मार्ग से जोड़ देते हैं। एतच्चन त्वो वि चिकेत देशाम सत्यो मंत्रः कविशस्त ऋघावान त्रिरश्रिम हन्ति चतुरश्रि रुग्रो देवनिदो ह प्रथमा अजूर्यन। मित्र और वरुण देवों में से कोई एक देव भी विशेष ज्ञानवान, सत्य के प्रति सुदृढ़, क्रांतदर्शियों द्वारा स्तुत्य और सामर्थ्य संपन्न है। दृष्टा ऋषि इससे भली प्रकार परिचित

0: मात्रा वरुणा चिकेत गर्भो भारम भरत्या चिदस्य ऋतम पिपर्त्यनृतम नितारित। हे मित्र और वरुण देव, बिना पैर वाली उषा पैर वाले प्राणियों से पहले पहुंच जाती है। गर्भ से उत्पन्न होकर शिशु सूर्य संसार के पालन पोषण रूपी दायित्व का निर्वाह करते हैं। यही सूर्य देव असत्य रूप अंधकार को दूर करके सत्य रूप आलोक को फैलाते हैं। प्रयंत मित्परि जारम कनीनाम पश्यामसि नोप निपद्यमानम अनवप्रिग्णा वितता वसानम प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम। सूर्यदेव सर्वत्र व्यापक तेजस्वी प्रकाश को धारण करके पत्नी रूप उषाओं की कांति को धूमिल करते हुए मित्र और वरुण देवों के प्रिय धाम की ओर सदैव गतिशील होते हुए दिखाई देते हैं। वे कभी भी विराम नहीं लेते। अनश्वो जातो अनभी शुर्वा कनिक्रदत पतयदूर ध्वसानुः अचितम ब्रह्म जुयुषुर युवानः प्रमित्रे धाम वरुणे गृणन्तः। अश्व और लगाम आदि साधनों से रहित होकर भी ये सूर्यदेव गतिमान होते हैं। वे अपने उदित होने के साथ शब्द करते हुए सभी ऊंचे शिखरों पर रश्मियां बिखेरते हैं। मित्र और वरुण देवों की तेजस्विता का गुणगान करते हुए युवा साधक सूर्य देव की विशेष रूप से स्तुति करते हैं। आधे नवो मामतेय मवंतीर ब्रह्म प्रियम पीपयंत सस्मिन्नूधन पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वाना साविवासन्न दिति मुरुष्येत। रक्षगौवे अपने स्रोतों से ममता युक्त उपासकों को पोषण प्रदान करें। सद्ज्ञान के ज्ञाता आप से उचित पोषण मांगे। आपकी उपासना से साधक मृत्यु को जीत लें। आवाम मित्रा वरुणा हव्य जुष्टिम नमसा देवा ववासा ववृत्याम अस्माकं ब्रह्म प्रतनासु सहिया अस्माकं वृष्टिर दिव्या सुपारा। हे दीप्तिमान मित्रा वरुण देव, हमारे द्वारा विनम्रता पूर्वक गाए गए स्तोत्रों को सुनकर आप दोनों यहाँ पधारें। आहुतियों को ग्रहण करके आप हमें संग्रामों में विजयी बनाएं तथा दिव्य वृष्टि द्वारा हमें अकाल और दुख दारिद्र्य से विमुक्त करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 152 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, चलिए हम और आप मिलकर चलें आज की इस भजन यात्रा पर। इस भजन यात्रा पर साथ साथ चलते हुए पहला प्रश्न मन में यही उठ रहा है कि आखिर भक्ति है क्या। सुबह शाम हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो प्रश्न यही मन में बार बार आता है कि आखिर भक्ति क्या है। श्रोताओं, दरअसल भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम, या कहें ऊर्ध्वमुखी प्रेम, व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम। भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में डूब जाना, समस्त जड़ चेतन के प्रति प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है, ये एक यात्रा है। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं, ये तो बस एक जीवन रस है। भक्ति को समझने का प्रयास व्यर्थ है, इस जीवन रस में डूबकर ही इसे समझा जा सकता है। तो आइए इसी प्रेम में डूबे हुए हम और आप चलें आज की भजन यात्रा पर।

श्रोताओं, भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि हे ईश्वर, मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा हूं अभी कि मुझे पूरा होना है। कमियां हैं मुझ में, सीमाएं हैं हजार, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है बूंद बूंद और सागर हो जाना है। ये हृदय की पुकार ही वंदना है, प्रार्थना है।

भक्ति शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी, भक्ति भक्त के हृदय में लिखी मिलेगी। भक्ति शास्त्र शब्द सिद्धांत से परे एक जीवंत सत्य है। भक्त जहां मिले उसे वहीं पढ़ लेना होगा, कहीं और पढ़ने का उपाय है ही नहीं। भक्ति भाव समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति बहुत सुगम है, लेकिन केवल उनके लिए जिनकी आंखें प्रेम को सोचते ही भर भर आती हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते ही नम हो जाती हैं।

श्रोताओं, मनुष्य का अस्तित्व तीन तलों में विभाजित है, शरीर, बुद्धि और हृदय। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म, विचार और भाव। कर्मवाद की यात्रा, कर्मकांड की यात्रा स्थूल प्रक्रिया है। दूसरा द्वार पहले से कुछ सूक्ष्म है, ज्ञान का द्वार, जिसमें चिंतन मनन है, इसका नाम है ज्ञान योग। और तीसरा द्वार अति सूक्ष्म है, भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का, और इसी का नाम है भक्ति योग। और भक्ति का मार्ग बेहद सुगम है।

श्रोताओं, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा भी संक्षिप्त नहीं है। बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति एक छलांग है। इसमें सीढ़ियां भी नहीं है और दूरी भी नहीं है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है, तत्क्षण घट सकती है। ये केवल भाव की बात है, इधर भाव और उधर रूपांतरण। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है विशुद्ध प्रेम की।

तो श्रोताओं, आज की इस भजन यात्रा में हम और आप साथ साथ चले ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी वंदना करते हुए। उस परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सर्व कल्याण की इसी कामना के साथ अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

कवि मन लिखता है, जीवन लिखता है, वो नदी पर्वत वन लिखता है, दुख दर्द आंसुओं की बात करता, कवि समय लिखता है, समय की वृत्ति लिखता है, कवि शब्द शब्द इतिहास, हमारी संस्कृति लिखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वो प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आम जन का संघर्ष, प्रेम और प्रकृति सौंदर्य उनके सृजन संसार का मुख्य विषय रहा है। उनकी जनवादी लेखनी भारत की सौंधी मिट्टी की महक लिए है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर मिलता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को बांदा जिले के बबेरू तहसील के पास स्थित कमासिन नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद और माता जी का नाम घसिट्टो देवी था। केदारनाथ अग्रवाल के पिता स्वयं एक कला प्रेमी व्यक्ति थे और वो कविता भी लिखते थे। इस साहित्यिक वातावरण का प्रभाव केदारनाथ अग्रवाल पर भी पड़ा। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद रायबरेली और कटनी में पिता के साथ रहते हुए वो जबलपुर आ गए। सन 1927 में इलाहाबाद से उन्होंने बीए किया और फिर कानून की पढ़ाई के लिए वो कानपुर चले गए। यहां से जब वो बांदा लौटे तो यहां रहकर वकालत करने लगे। केदारनाथ अग्रवाल के घर का वातावरण अत्यंत सात्विक, धार्मिक और साहित्यिक था और गांव में रहते हुए उन्हें प्रकृति का भरपूर साहचर्य भी मिला। जंगल, हिरण, बादल, बारिश, हरियाली, इस पूरे वातावरण ने कवि केदारनाथ अग्रवाल को गढ़ने का काम किया।

केदारनाथ अग्रवाल बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। जबलपुर और इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण और उनकी कोमल संवेदनाओं ने उनकी लेखनी को प्रेरित किया। उनके पिता वैद्य होने के साथ साथ काव्य रचना और काव्य चर्चा में भी संलग्न रहा करते थे, इसलिए उनके घर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। यहीं पर केदारनाथ अग्रवाल ने निराला विरोध का स्वर सुना। यहीं उन्होंने निराला जी द्वारा संपादित मतवाला को पढ़ा और देखा। इलाहाबाद में उन दिनों रसिक मंडली स्थापित थी, जिसमें कवित सवैया ब्रजभाषा के कवि आते थे, इसलिए केदारनाथ अग्रवाल का झुकाव ब्रजभाषा की ओर भी हुआ। वहीं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली काव्य से भी उनका परिचय हुआ। प्रकृति की ओर उनका झुकाव शुरू से ही रहा। यही कारण है कि उनका प्रारंभिक रूप प्रकृति कवि के रूप में ही सामने आता है। युग की गंगा से लेकर कुह की कोयल खड़े पेड़ की देह कविता संग्रहों में उनकी अधिकांश कविताएं प्रकृति परक हैं। उनके कविता संग्रहों के शीर्षक भी इस बात की पुष्टि करते हैं, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, पुष्पदीप आदि। वो कहते भी हैं, धूप छांह खाई हरियाली, विजय पताका लिए हाथ में, फूलों और फलों की शोभा लिए साथ में, प्रकृति प्रेम से मतवाली है, यह हरियाली मुझको प्रिय है, यही मुझे करती है प्रमुदित, यही मुझे रखती है जीवित। केदारनाथ अग्रवाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है बसंती हवा, जिसमें मुक्ति की कामना बहुत ही उदात्त ढंग से अभिव्यक्त हुई है। इसमें वो कहते हैं, अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। कानपुर में बिताया समय भी केदारनाथ अग्रवाल के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन दिनों कानपुर में प्रगतिशील विचारों और साहित्यिक संस्कारों का माहौल था। इसी समय उन्होंने बहुत सा विदेशी साहित्य भी पढ़ा, श्रमिकों मजदूरों की समस्याओं को समझा। जब वो बांदा में वकालत कर रहे थे, तब उस समय के कटु यथार्थ से उनका परिचय हुआ और उनकी लेखनी पर इस पूरे वातावरण का गहरा असर हुआ।

केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका साहित्यिक जीवन जब आरंभ हुआ तब देश अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा था। एक तरफ सत्याग्रह आंदोलन जारी थे तो दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांति भी जारी थी। यही वो समय था जब किसानों और मजदूरों के पक्ष में भी आवाज उठ रही थी। कई सुधार आंदोलन चल चुके थे लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में फिर भी मौजूद थीं। कुल मिलाकर देश की आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत ही खराब थी। अंग्रेजों के शोषण ने देश को अत्यधिक गरीब कर दिया था। किसानों और मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। यही कारण है कि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में ये दर्द शामिल रहा। वो लिखते हैं, अधिकांश जनता का रद्दी की टोकरी का जीवन है, संज्ञाहीन अर्थहीन बेकार चिरे फटे टुकड़ों सा पड़ा है। देरी है एक दिन एक बार आग के छूने की, राख हो जाना है। केदारनाथ अग्रवाल ने जनता के पिछड़ेपन और अंधविश्वासों पर तो लिखा ही, उन्होंने श्रमिकों के यश को भी खूब गाया। रामविलास शर्मा ने श्रम को समर्पित उनकी ऐसी कविताओं को श्रम का सूरज कहा। उनकी श्रम के सौंदर्य पर लिखी कविताओं में किसान अक्सर काम करता हुआ दिखता है। वो लिखते हैं, पैनी कुसी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को, मेरे खेत में हल चलाता है फाड़ कलेजा गड़ जाता है, तड़ तड़ धरती तड़काता है राह बनाता बढ़ जाता है। कविता छोटे हाथ में वो श्रम की महिमा कुछ यूं गाते हैं, छोटे हाथ सवेरा होते लाल कमल से खिल उठते हैं, करनी करने को उत्सुक हो धूप हवा में हिल उठते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ लेकिन आजादी के बाद की सामाजिक स्थितियों से केदारनाथ अग्रवाल संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं, एक रोटी के लिए तड़पे सदा अधपेट खाए, दूसरा घी दूध शक्कर का मजा भरपेट पाए, मैं इसे विधि नहीं अभिशाप जग का मानता हूं, अभिशाप जग का मानता हूं। केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा, कहें केदार खरी खरी, गुल मेहंदी, लोक और आलोक, जो शिलाएं तोड़ते हैं, अपूर्वा, पंख और पतवार जैसी काव्य रचनाओं के साथ ही कुछ गद्य रचनाएं भी की, जिनमें प्रमुख हैं पतियां, समय समय पर विचार बोध, बस्ती खिले गुलाबों की, विवेक विवेचन आदि। साहित्य जगत में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 1986 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा वो हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानों से अलंकृत हुए। केदारनाथ अग्रवाल आम जन के कवि थे जिनके भीतर संघर्षशील मनुष्यों के प्रति गहरी संवेदना थी। उनकी रचनाओं में 40 वर्षों की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति बहुत गहराई से रेखांकित है, जिसमें वो एक शोषण मुक्त समाज के माध्यम से भारत की जय विजय की कामना करते हैं। इसी कामना में संलग्न 22 जून सन 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 MHz।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज का विशेष कार्यक्रम केंद्रित है विश्व योग और संगीत दिवस पर। विश्व योग और संगीत दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पहले भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। कलाकार थी स्मिता महाजन और साथी पुणे से। और दूसरी प्रस्तुति रही शास्त्रीय गायन की। कलाकार थी प्रदक्षिणा भट्ट और साथी भोपाल से। तो पहले प्रस्तुत है भरतनाट्यम की प्रस्तुति।
2: कोई भी कला तभी जीवित रहती है जब उसकी परंपरा बनती है, जब पुराने संदर्भ, पुराने रिश्ते नाते, पुरानी सामाजिक अवस्था बदलते बदलते आगे बढ़ती है। वैसे ही हमारी कला की परंपरा आगे बढ़ती है नए नए संदर्भ साथ में लेते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कला अंतिम में जीवन का, हमारी समझ व व्यवस्था का ही चित्रण है, भले वो नृत्य हो, शिल्प हो, चित्र हो या संगीत। ऐसी एक हिंदी रचना अब आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें दो सखियां हैं, बड़ी अच्छी एक मेक के साथ घुलने वाली, लेकिन आज उसमें से एक सखी कुछ नाराज है, इसलिए नायिका कहती है, रूठ गई सखी कैसे मनाऊं, बात करन को कैसे जाऊं, मन की बात मैं बोल न पाई, ना जाने वो रुस्वा हो गई, मैं उसको मेरे मन की बात कह नहीं पाई और वो तो रूठ गई। रूठ गई सखी कैसे मनाऊं, नित्य सखी से मिलने जाती, मैं तो हमेशा रोज के रोज उसको मिलने जाती हूँ, जाती थी, नित्य सखी से मिलने जाती, बातें होती खिल में जाती, आज रही पर बात अन कही, सोची वह क्यों हुई पराई, आज मुझे प्रिय सखी मुझे पराई क्यों लग रही है, रूठ गई सखी कैसे मनाऊं। पदम।

0: ये थी भरतनाट्यम की प्रस्तुति, कलाकार थीं स्मिता महाजन और उनके साथी, और ये है शास्त्रीय गायन प्रदक्षिणा भट्ट का।
1: नमस्कार, मैं प्रदक्षिणा भट्ट आज आप सभी के समक्ष राग यमन कल्याण प्रस्तुत करने

0: ये था आज का विशेष कार्यक्रम विश्व योग और संगीत दिवस पर, जिसमें पहली प्रस्तुति रही भरतनाट्यम की, कलाकार थी स्मिता महाजन और साथी, और दूसरी प्रस्तुति रही शास्त्रीय गायन की, कलाकार थी प्रदक्षिणा भट्ट और साथी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, काल की उंगलियों पर नाचता ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है। जो कल अंकुर था वो आज वृक्ष है, और जो आज पुष्पित है वो कल मुरझाने की ओर अग्रसर होगा। दिन रात के साथ जीवन बहता जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, देह ढल जाती है, लेकिन काल का प्रवाह कभी नहीं रुकता। वृद्धावस्था जीवन का वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी समस्त उपलब्धियों, आकांक्षाओं और अभिमानों का वास्तविक स्वरूप देखता है। जिन पैरों में कभी गति का गर्व था वहां अब थकान है, जिन आंखों में कभी स्वप्न थे उन आंखों की ज्योति क्षीण हो चली है। काल उस अग्नि की तरह है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। काल पर्वतों को धूल और राजाओं को कथा बना देता है। उसके सम्मुख यौवन का मद, संपत्ति का मोह और संसार का आकर्षण निस्सार हो जाता है। इस सत्य का बोध भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि उस शाश्वत तत्व की खोज के लिए है जो कालातीत है, जो अविनाशी है। आइए योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के साथ वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा करें। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: आज इस कार्यक्रम में हम वृद्धावस्था पर बात करने जा रहे हैं, काल के स्वरूप पर बात करने जा रहे हैं। वृद्धावस्था के बारे में वैसे हर मन में वही बात आती है जो मैंने कही, वृद्धावस्था को वृद्धावस्था में ही महसूस नहीं करता आदमी, बल्कि जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है तभी से उसका भय उसके भीतर आने लगता है और एक तरह की दृष्टि हर मनुष्य के भीतर आने लगती है। भगवान श्री राम इतनी छोटी उम्र में वृद्धावस्था के विषय में क्या विचार कर रहे हैं?
2: ये विचार कर रहे हैं कि वृद्धावस्था किस तरीके से लोग इसमें दुखी हैं। वृद्धावस्था की दुख रूपता का वर्णन करते हैं वो गुरुजी से, कहते हैं वशिष्ठ जी से कि ये अवस्था वैसे ही है जैसे लेश मात्र विष का भक्षण करने से शरीर कुरूप बन जाता है, ऐसे ही वृद्धावस्था व्यक्ति के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। और जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं, वह जरा अवस्था के सारे अंगों पर जब विचार करते हैं तो उनको बड़ा गहरा दुख होता है और शरीर के नष्ट होने का भय भी उन्हें दिखाई देता है। और उनके साथ जो आसपास के सुहृद जन हैं, जो व्यवहार करते हैं, क्योंकि हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो जो नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव, ये सब लोग उनको उन्मत्त समझकर उनका हंसी उड़ाते हैं। बुढ़ापे में ऐसा भी राम जी देखते हैं बूढ़ों के साथ। तो ऐसे में कहते हैं कि ये अवस्था देख करके हमें लगता है कि इस शरीर और इस संसार के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे में जिसमें दुख ही दुख हो, ऐसे जीवन के साथ हम जी करके क्या करेंगे, ये प्रश्न राम जी के चित्त में तब उठ रहा है जब वो 14 वर्ष के हैं।
1: जी जी।
2: तो अब आप ये विचार करें कि यहाँ तो वृद्धावस्था में व्यक्ति भूत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, न कि वृद्धावस्था के सत्य को देख करके वो उससे कुछ सीखता है। कुल मिलाकर के जैसा कि आपने कहा कि ये वैराग्य जो प्रकरण है ये किसी प्रकार के भय का पटाक्षेप नहीं है, बल्कि ये आपको सजग और मतलब सावधान होने की बात है कि इसके पहले की वृद्धावस्था आए आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानने या जीवन का जो सच है उस सच का साक्षात्कार करने की तरफ अग्रसर हो सके, ये जिज्ञासा है।
1: योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम क्या देखते हैं कि इस अवस्था में किस तरह का भय होता है?
2: इस अवस्था में सबसे बड़ा भय ये होता है कि व्यक्ति का संसार छूट रहा होता है तो आदमी सोचता है कि परलोक में जाके मैं करूंगा क्या, क्योंकि परलोक की भी तमाम सारे दृश्य बनाए गए हैं कि परलोक में ये चीजें मिलेंगी, और संसार में भी वो दृश्य है, लेकिन आज उसका भोग करने की स्थिति में व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में जिस अवस्था में वो है, उस अवस्था के अनुसार जब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे परलोक जाऊंगा तो उस परलोक में मैं क्या करूंगा, ये सबसे बड़ा भय वृद्ध के मन में उत्पन्न हो रहा होता है और वो इस भय से भयभीत होता रहता है।
1: वृद्धावस्था में किस तरह के विचार आते हैं? भगवान श्री राम ने अपने विवेक से इस बात को देखा है,
2: बिल्कुल,
1: वो क्या कहते हैं, कैसे विचार आते हैं?
2: बहुत सुंदर आपने कहा। वो कहते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने आप को बेचारा महसूस करता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बेचारा हूं, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार कर्म करूं, क्योंकि उस समय व्यक्ति को उपेक्षा पूर्ण दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने सपनों को जीने का प्रयास किया, लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, जब बुढ़ापा आता है तो उस समय जब उसकी उपेक्षा होती है तो उस उपेक्षा में वो अपने जीवन पर सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी हस्ती क्या है, मैं क्यों हूँ, ऐसे तमाम तरह के निराशाजनक जो ख्याल हैं उसके मन में आते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वृद्धों के साथ बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके चित्त में ऐसे विचार तो स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं।
1: जी,
2: तो ऐसे में अगर उनको उपेक्षित किया जाए तो इन विचारों को और बल मिलेगा और वो हताशा, निराशा और तमाम तरह के मानसिक विकृतियों के शिकार हो सकते हैं।
1: अच्छा, इस अवस्था में शरीर की जो शक्ति है उसकी जो स्थिति है उसके विषय में भी भगवान श्री राम कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के सामने वो भी आप एक व्याख्या की तरह।
2: इसमें जो शक्ति का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि वो हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आंख से धुंधला दिखने लगता है, खाने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है लेकिन पचाने का सामर्थ्य नहीं होता, और पचाने का सामर्थ्य जो होता है तो खाने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस तरह से भोग की शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो प्रबल होती है लेकिन उपभोग करने का सामर्थ्य नहीं होता, तो इस तरीके से शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। और राम जी कह रहे हैं कि संध्या काल की संध्या के प्रकट होते ही जैसे अंधकार दौड़ पड़ता है, वो वैसे ही जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है, ऐसा भी मतलब बुढ़ापे में व्यक्ति देखता है, जी, क्योंकि अपने साथ मतलब बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देख रहा है वो। तो इस तरह से राम जी कहते हैं कि भूतल पर जो किसी से पराजित नहीं हुआ उसको ये अवस्था पराजित कर देती है और व्यक्ति की सारी ऐषणाएं खत्म हो जाते हैं, उसका तिरस्कार हो जाता है, उसकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती है जरावस्था।
1: बिल्कुल, अनुभव में भी ये बात आती है ना कि अगर हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं उनको जब हम देखते हैं तो सामान्य सी बीमारियां जो पहले भी उन्हें कभी हुई होंगी,
2: बिल्कुल,
1: लेकिन उम्र बढ़ने के बाद जब वही रोग दोबारा होता है, कोई बीमारी होती है, छोटी बीमारी ही हो, तो उनके मन में जो पहला विचार आता है वो मृत्यु का आता है,
2: बिल्कुल,
1: कि
2: बिल्कुल।
1: शायद ये उसका बहाना हो, ना, तो एक स्वाभाविक सोच वैसी बनती जाती है वृद्धों की।
2: निश्चित ही बनती जाती है। और जब इसको व्यक्ति देखता है तो अब राम जी तो जिस उम्र में देख रहे हैं वो आज ही सजग है कि हमारे इन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें नहीं मिला तो हमें तो संसार में करने योग्य कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर कर्म करके ही तो वृद्ध हुआ है, तो बुढ़ापा में सारे सामर्थ्य उसके क्षीण हो गए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ दुख रूप ही है और किसी भी जन्म लेने वाले व्यक्ति की अंतिम जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था ही होती है, जिसको वो पार करते हुए मृत्यु के करीब पहुंचता है। तो वो कहते हैं कि जब इतना दुख रूप ये संसार है तो इस संसार में करने योग्य क्या है, ये सवाल उनके मन में उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो कर्म से ही अपने को अलग कर रहे हैं। तो गुरुजन तो अभी उनकी इस वैराग्य की दशा की सारी बातें सुन रहे हैं, जिसको वो बेबाकी से कहकर पहले अपने चित्त को शांत कर लें, और उसके बाद फिर उनकी क्या जिज्ञासा होती है, कैसे उनकी कह सकते हैं वैराग्य की अवस्था से उनको हटा करके फिर कर्म में कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए आगे के प्रकरण में हम लोग देखेंगे।
1: अच्छा, मैं अभी योग वासिष्ठ को जब पलट रही थी तो इसमें काल के ग्रास की बात आती है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को पहले तो आप बताएं कि काल क्या है,
2: जी,
1: पहले तो ये समझाएं और फिर ये बताएं कि वो किसका भक्षण करता है।
2: बिल्कुल, काल का मतलब यहाँ पर बहुत विशद रूप में भगवान ने देखा है। काल का मतलब ये कह सकते हैं, काल का अर्थ समय भी है, और भगवान ने तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी है कि गणना में मैं काल हूँ। कोई भी जो गणना करते हैं भूत भविष्य वर्तमान, ये काल की ही गणना है। तो कहते हैं ये काल जो है सातों भुवनों को निगल जाता है, इस काल से कभी भी कोई बचा नहीं है। तो इस काल को देखते हैं कि ये काल का ग्रास ये जगत है जिसमें पूरा जगत समाता जा रहा है। तो जगत जब समा रहा है तो जगत के सारे प्राणी भी समा रहे हैं। और मैं इसके लिए थोड़ा सा जो योग का सबसे मतलब वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता, जिसमें भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसमें वो काल का ही स्वरूप है जिसको हम विश्व रूप दर्शन कहते हैं, कि कोई उनके जबड़े में फंसा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई जवान हो रहा है, कोई मर रहा है। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि पूरा जगत, यानी जहां आपकी बुद्धि की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, ऐसे विस्तार का नाम है काल। उस काल में ये सारा जगत समा जाता है, जिस जगत को साधने के लिए व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है और चिंतित होता है और व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को ग्रसित करता है और विभिन्न रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो जब जगत ही काल का ग्रास बन जाता है तो फिर जगत में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से निश्चिंतता का भाव जो योगियों के चित्त में होता जी, है जी, इस भाव को भी हम समझ सकते हैं काल के स्वरूप से, कि काल में जैसे कबीरदास जी कहते हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। ये भी एक काल का चित्रण है कि जो होना है वो हो ही जाता है, तो फिर अनहोनी कुछ भी नहीं होता। हाँ। क्योंकि काल में निश्चित है वो क्या होना है, और मनुष्य अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाते उसको उद्घाटित करने की या उसको डिकोड करने की, उस रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास करता है, जबकि वो जाना नहीं जा सकता।
1: आपने भी विश्वरूप की बात की, कहा कि काल का ही एक स्वरूप वो है विश्वरूप का, जो दर्शन करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को। भगवान श्री राम ने क्या देखा, काल का स्वरूप क्या है?
2: भगवान श्री राम कहते हैं कि ये काल बड़ा निर्दय है, कठोर है, क्रूर है, कर्कश है, कृपण और अधम है।
1: अच्छा।
2: हाँ, संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त न कर ले, जिसको ये उदर में अपने धारण न कर ले। अब आप देखिए कि जीव इसी संसार को साधने का प्रयास कर रहा है, जिसको ये काल अपने उदर में लगातार लेता जा रहा है। हम लोग कहते भी हैं ना कि जीवन में जन्म लेने वाला जीव जो है हर पल मृत्यु के करीब, यानी काल के करीब जा रहा है। तो काल के उदर में हम जा रहे हैं, और उसके बाद भी इस संसार को पकड़ने और इस संसार के मोह में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि जहां लगता है कि ये संसार ही हमारे जीवन का अभिष्ट है। इसको बड़ा एक सुंदर उदाहरण में उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे काल को आपको देखना हो तो वो कहते हैं ऋषि कि जैसे एक मेढक को एक सांप ने अपने मुंह में पकड़ लिया है, लेकिन वो मेढक बार बार कीड़े को खाने का प्रयास कर रहा है, वो अभी भी जीवन की तलाश कर रहा है, जबकि उसका जीवन खुद संकट में है, उसका काल बन करके वो सर्प उसे अपने उदर में लेना चाहता है। ऐसे ही काल के उदर में सब समाये हुए हैं, लेकिन इसको न देखने की वजह से वो भ्रम बस संसार में
1: तस्वीर भटक रहे हैं। बन जाती है, लेकिन भय की बात नहीं, समझ की बात
2: है
1: कि हम किस तरह से समय को देखें, किस तरह से हम जीवन को देखें।
2: जी
1: अच्छा, मैं देख रही थी योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी, तो कहीं एक जगह वो कहते हैं भगवान श्री राम काल को उन्होंने धूर्तों का शिरोमणि कहा।
2: बिल्कुल।
1: तो ये मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप समझाएं कि ये किस तरह से उन्होंने ये कहा है।
2: हम लोग संसार में कहते हैं ना ये बड़ा धूर्त है।
1: हाँ।
2: तो कहते हैं समय बहुत धूर्त की तरह है कि जहां आपको लगता है कि ये आपको पोषित कर रहा है, आपको जवान कर रहा है, आपके जीवन में खुशियां ला रहा है, लेकिन आपके जीवन की खुशियों का भक्षण भी यही कर रहा है।

0: राम में आप दुखी हो गए, तो ये इसकी धूर्तता का प्रभाव है। तो राम जी कहते हैं तो धूर्तों का शिरोमणि है जो दृश्य होकर के भी दिखता नहीं है, जो जो है वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो है नहीं, इसीलिए इसको माया भी कहा गया है। माया का मतलब मां मतलब नहीं, या मतलब जो जो नहीं है और होने जैसा प्रतीत हो वो है काल। तो काल की महिमा बड़ी विशद रूप में राम जी ने वर्णन किया है इसमें कि वो काल का जो मुझे दृश्य दिखाई देता है ये काल बड़ा भयावह तो नहीं कहेंगे लेकिन इसका स्वरूप ऐसा है कि इस काल से ना कोई बच सकता है। तो ऐसे में इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर पाए, क्योंकि अंततः वो काल का ग्रास बन ही जाएगा।
1: जी जी। अच्छा, मेरे मन में अचानक ही मतलब मुझे याद हुआ कि जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं,
0: जी जी,
1: तो जन्मदिन का आना भी काल से जुड़ा हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल जी जी,
1: है ना?
0: जी,
1: तो उसको एक उत्सव की तरह आप मनाते हैं, समारोह पूर्वक मनाते हैं
0: जी,
1: लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि हम मृत्यु की तरफ एक और कदम बढ़ गए
0: जी।
1: तो शायद ऐसी ही बात है ये।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। उस दृष्टि से हम देख नहीं पाते। हाँ,
0: देख नहीं पाते। एक बात और देखिए, वैराग्य का मतलब क्या हुआ या योग का मतलब ये होता है कि समग्रता से किसी चीज को देखना। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम अपने चुनाव के अनुसार चीजों के एक पार्ट को देखते हैं और दूसरे विषय को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क का ऐसा बनावट है कि जैसे हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं और जो हम नहीं देखना चाहते हैं वो होते हुए भी दिखता नहीं है। यहाँ पर जो कहते हैं जो नहीं देखते आपके अनदेखा कर देने से वो मिट नहीं जाता, उसका भी होना है। तो अगर आप उसको देख पाएंगे तो जो राग द्वेषात्मक जो बंधन है ये बंधन ढीला पड़ेगा और इसके जो प्रभाव से आपके चित्त में जो आंदोलन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, उस विचलन से आप शांति की अवस्था को उपलब्ध हो सकेंगे जब समग्रता से देखेंगे। तो ये इसका इशारा है कि आप उसे अनदेखा मत करें, अनदेखा करने से मिटेगा नहीं। जो चाहते हैं वो देखिए, लेकिन जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसके भी सत्य को स्वीकारिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अब आप ये बताएं कि इस संसार में, जगत में, व्यावहारिक स्थिति में काल किस तरह से अभिव्यक्त होता है।
0: बिल्कुल सुंदर कहा आपने। व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता और संहार करने वाला, स्मरण करता भी यह काल ही है। इन तमाम रूपों में यह काल प्रदर्शित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो हम हर पल अपनी स्मृतियों के साथ ही अपने मैं का अस्तित्व बनाते हैं। आप देखें तो स्मृतियां क्या हैं? काल की ही तो हैं। आप अपने बचपन की करें, युवावस्था की करें, किसी भी दृश्य की स्मृति करें, चाहे वृद्धावस्था के बारे में सोचें, तो अंततः आप सोच किसके बारे में रहे हैं? काल के बारे में ही तो सोच रहे हैं। तो ये काल का जो स्वरूप है, जो व्यवहार में ये व्यक्त होता है, वो कर्ता, भोक्ता, संहार करता और स्मरण करता के रूप में काल ही है। यानी देखें तो समस्त जो कर्ता मनुष्य को अपने कर्तापन का जो बोध होता है वो उसके कर्तापन का बोध नहीं है। उस कर्तापन में जो जो योग की तरफ या वैराग्य जिसके चित्त में विवेक से उत्पन्न हुआ है उसमें कर्ता काल दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समय ही सब कुछ है, समय बलवान है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम कमजोर हो गए या हम ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं है, वो समय की शक्ति है। जी।
1: अच्छा शशिकांत जी, इसमें काल की पत्नी की चर्चा भी एक जगह आई।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं चाह रही थी कि हमारे सुनने वालों को बताएं कि काल की पत्नी कौन है।
0: काल की पत्नी को चंडी कहा गया
1: जी,
0: और इसको काल रात्रि भी कहते हैं। अत्यंत कोपवती है ये काल रात्रि, मतलब जैसे काल का स्वरूप क्रूर है तो जो उसकी पत्नी है, जो काल रात्रि जिसे कहते हैं, कई बार हम लोग अपने साधनाओं में कालरात्रि की पूजा देवी के रूप में कालरात्रि भी कहते हैं उसे, तो उसमें ये कहते हैं कि बड़ी कोपवती है जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है और इसके साथ सारी मातृकाएं, डाकिनी, शाकिनी आदि रहती हैं इनकी पत्नी के साथ। ये जो मतलब जो मातृकाएं हैं, आप देखते होंगे जब हम घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मातृकाओं, षोडश मातृकाओं की भी पूजा करते हैं।
1: जी, जी,
0: तो वो काल की जो पत्नी कालरात्रि हैं उन्हीं की साथ रहने वाली जो मातृकाएं हैं उनकी पूजा है। अच्छा। तो काल की पूजा भी की गई हमारे यहाँ, क्योंकि काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल में ही हम हैं, तो काल से डर के हम जाएंगे कहाँ? तो जिससे हम बच नहीं सकते उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके स्वरूप को जानने से हमारे चित्त में जरूर शुद्धि होगी और चित्त का जो मलिनता है वो दूर होगा।
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा, काल के धनुष की भी चर्चा है इसमें।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं चाह रही थी कि वो भी आप बताएं।
0: काल का धनुष अभाव है, संहार है। जैसे आप देखें तो काल स्मृति करता, जब आप स्मरण करते हैं किसी चीज को, तो जो चीज समाप्त हो चुका है यानी भूत में बीत गया है उसको आप याद करते हैं, और या फिर भविष्य की योजनाओं को आप सोचते हैं उसके बारे में, वो

0: भी नहीं है, तो काल के धनुष पर अभाव है, संहार है। तो काल के धनुष को कहा गया अभाव है, संहार है, जिस पर काल अनेक प्रकार के बाणों को चलाता रहता है, जिससे संसार की गति होती है और अंततः वो काल के का ग्रास बन जाता है।
1: तो एक जगह नृत्यशाला की भी बात आई है।
0: हाँ, काल का नृत्यशाला,
1: काल नृत्य करता है।
0: जी जी जी,
1: तो मैं चाह रही थी कि वो भी आप उसकी भी एक व्याख्या कर दें।
0: कहते हैं कि ये काल जो जगत मंडल दिखाई देता है वह इस काल की नृत्यशाला है, यानी पूरा जो जगत मंडल दिखाई दे रहा है इसी में ये काल नृत्य करता है विभिन्न रूपों में।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: आप देखें जैसे हम कार्य का काल का ही स्मरण करता है हम, तो हमारा जो चित्त तमाम सारी चीजों में स्मरण मतलब कर रहा है या भाग रहा है या नाच रहा है, उसे नाचना भी कह लें, दौड़ रहा है, तो वो अंततः काल की सीमा से अलग कोई चीज नहीं है। तो इस जगत को इस काल का नृत्यशाला भी राम जी ने कहा। और कहते हैं कि जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवनों, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता रहता है। यह है काल की नृत्यशाला।
1: जी। तो शशिकांत जी, आज हमने वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा की है। मैं चाहती हूँ संक्षेप में इस पूरी चर्चा को अगर मैं कहूँ कि आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं के लिए रखते हैं।
0: संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था जो जीवन का एक कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जहां उसके अवसान भी कह सकते हैं और साथ ही साथ जीवन की यात्रा का वो एक मंजिल भी है वृद्धावस्था, जहां हर व्यक्ति वहां पहुंचेगा, तो वो दुख से भरा हुआ है। तो दुख से भरा हुआ है इस नाते इस संसार में जो सुख खोजने की मनुष्य की प्रकृति है, वो प्रकृति संसार में न हो बल्कि वो अपने स्वरूप के प्रति, अपने अद्वैय जो रूप है उसको जाने, वो कि हम हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है और जो सच्चिदानंद जो रूप है उसकी तरफ हो जाए, ना कि संसार की तरफ। और दूसरी बात, जो आपने काल की बात कही, काल का विस्तार इतना प्रबल है कि काल इस जगत को अपना ग्रास बना लेता है, तो ऐसे में उस काल के स्वरूप को जानते हुए ये जाने कि सब कुछ काल में ही है और काल कभी भी स्थिर नहीं है, निरंतर गति उसकी हो रही है। और भगवान ने जब कहा कि गणना में मैं काल हूं, तो इसका मतलब काल से हम बच नहीं सकते। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति संज्ञान लेकर के करें, ताकि काल हमारे कर्म का जो फल बनाए वो हमारे अनुकूल हो, और इसके लिए हमें कर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा
1: जी।
0: तब जाकर के फल हमारे मन के अनुकूल होगा।
1: बिल्कुल। तो शशिकांत जी, आज वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर हमने बहुत ही सार्थक चर्चा आपसे सुनी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपका बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, वृद्धावस्था और काल के स्वरूप का विवेचन आपने सुना योग संवाद कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज है 23 जून और आज हमारा पूरा विश्व मना रहा है वर्ल्ड ओलंपिक डे। आज का दिन खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का ग्लोबल उत्सव है। श्रोताओं, वर्ल्ड ओलंपिक डे में ओलंपिक क्या है, आइए आपको बताते हैं। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन है। सरल भाषा में अगर हम इसे समझें तो हर चार साल में होने वाली इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, जिसमें दुनिया भर के लगभग 200 देशों के हजारों खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं और इनका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC कराती है। तो श्रोताओं, आइए आज विश्व ओलंपिक दिवस पर हम विस्तार से बात करते हैं हमारे आज के अतिथि महोदय श्री SK प्रसाद जी से, जो मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक हैं। सर नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार मैम।
2: सर, सबसे पहले आज वर्ल्ड ओलंपिक डे पर हमारा आपसे यही प्रश्न है कि हम आज का दिन कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं?
3: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की स्मृति में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
2: जी।
3: पहला विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। यह तिथि 1894 में इसी दिन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन की स्थापना पियरे डी कोबर्टिन ने की थी, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार के लिए प्रेरक शक्ति माना जाता है।
2: जैसे कि आजकल तो हम वर्ल्ड ओलंपिक डे मना रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओलंपिक से पहले प्राचीन खेल कैसे हुआ करते थे?
3: प्राचीन ओलंपिक खेल आधुनिक खेलों की तरह केवल प्रतियोगिता न होकर एक विशाल धार्मिक उत्सव हुआ करते थे।
2: जी जी।
3: ये खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में हर चार साल में एक बार ओलंपिया ग्रीस में आयोजित किए जाते थे और इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व मनाई जाती है।
2: सर, जैसे ओलंपिक का जो प्रतीक है पांच रंग के छल्ले, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या संकेत देते हैं छल्ले?
3: ये दुनिया के पांच बसे हुए महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2: अच्छा।
3: छल्लों का आपस में जुड़ा होना वैश्विक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह दर्शाता है कि खेल और ओलंपिक आंदोलन के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग, जो अलग अलग संस्कृतियों और देशों से आते हैं, एक मंच पर एकजुट होते हैं। इन पांच छल्लों को सफेद पृष्ठभूमि पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि सफेद बैकग्राउंड के साथ नीले, पीले, काले, हरे और लाल, इन पांच रंगों में से कम एक रंग दुनिया के हर देश के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद होता है।
2: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि ये पूरे विश्व के जो पांच महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं ये छल्ले जो हैं, और इनके जो सुंदर से रंग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत है। अच्छा सर, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, अपने देश की बात करें
3: जी,
2: तो
3: जी। भारत ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था
2: जी।
3: एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व एथलेटिक्स स्पर्धा में 200 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेकर दो रजत पदक जीते थे, जिसके साथ ही भारत ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला एशियाई देश बना था
2: जी, जी।
3: भारत ने इसके बाद 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार अपनी आधिकारिक एथलीट टीम भेजी थी।
2: सर, ओलंपिक खेलों को हम जिस तरीके से समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं खिलाड़ी के जीवन की, तो खिलाड़ी के जीवन में ओलंपिक का क्या महत्व होता है?
3: खिलाड़ी के जीवन में ओलंपिक का महत्व केवल एक खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना और सर्वोच्च सम्मान है। यह खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने, अपने देश का नाम रोशन करने और खेल भावना को सीखने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य CTS, RTS, 40S से प्रेरित होकर खिलाड़ी अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लांघना सीखते हैं।
2: अच्छा सर, जैसे अगर हम हॉकी की बात करें तो वर्ष 1928 से 1956 तक हॉकी का जो था वो भारत में दबदबा था, उसके बाद क्या बदलाव हुए?
3: 1928 से 1956 तक भारत विश्व हॉकी का निर्विवाद बादशाह था।
2: जी जी।
3: भारत लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, लेकिन 1956 के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिनसे भारत का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव 1970 के दशक में आया जब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्राकृतिक घास से कृत्रिम टर्फ पर चली गई। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग, कलात्मक स्टिक वर्क और कौशल आधारित खेल में माहिर थे। टर्फ पर खेल अधिक तेज, शारीरिक और फिटनेस पर अधिक हो गया। यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया देशों का इसका अधिक लाभ मिला। भारत के शुरुआती दौर में हॉकी कुछ ही देशों में लोकप्रिय थी, बाद में नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बेल्जियम ने वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल लीग और आधुनिक कोचिंग में भारी निवेश किया। इसमें मैं अपना एक पर्सनल बोलूँ तो एक तरह से मेरा ये पर्सनल विचार है मैम
2: जी जी,
3: कि आप देखिए फुटबॉल भी प्राकृतिक घास होता है
2: जी,
3: लेकिन
2: जी।
3: वो कृत्रिम घास पे आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन हॉकी को टर्फ पे लाने से हम लोग को थोड़ा सा डाउन हुए हैं, लेकिन अभी फिर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं
2: जी, जी।
3: और स्पेशली मैं कहूँ मध्य प्रदेश हॉकी में बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी लड़कियाँ 4-5-6 लड़कियाँ जो है इंडियन टीम में रहती हैं। लड़कों में भी अभी विवेक सागर प्रसाद इंडियन टीम का हिस्सा हैं, जो पिछले बार ओलंपिक से मेडल जीते थे, एशियन गेम्स मेडल जीते थे, और हमारे जो मुख्य प्रशिक्षक का रोल कर रहे हैं खुद ओलंपियन रहे हैं मिस्टर समीर दाद साहब हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है।
2: सर अगला प्रश्न आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभिनव बिंद्रा से लेकर के नीरज चोपड़ा तक भारत ने जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उनका सफर कैसा रहा है अभी तक?
3: अभिनव बिंद्रा द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में जीते गए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक से लेकर नीरज चोपड़ा द्वारा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाने तक का सफर भारतीय खेलों के काया पलट और जुनून का अद्भुत कहानी है।
2: जी जी।
3: दोनों ही चैंपियन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, फिटनेस पर विशेष ध्यान, एक लक्ष्य के प्रति देश में कई नई ऊर्जा और खेलों के प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। और देखिए दोनों ही खिलाड़ी का आप जब मिलेंगे उनसे ग्राउंड टू अर्थ है आज
2: जी, जी।
3: उनमें थोड़ा भी नहीं लगता है कि ओलंपिक चैंपियन है, किसी से मिलना है एकदम नेचुरल तरीके से हर आदमी को सम्मान करते हैं, उनका बिहेवियर इतना पोलाइट है मैम, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़े खिलाड़ी इतना ग्राउंड टू अर्थ है। इससे क्या होता है कि ब्लेसिंग देने वालों की संख्या बढ़ जाती है
2: जी, जी।
3: और जब हम टॉप लेवल कंपटीशन में जाते हैं तो जब लोग ज्यादा दुआ देंगे ना
2: जी, जी।
3: तो हमारा प्रदर्शन भी बहुत उच्च कोटि का होगा।
2: बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे ये तो बात हो गई चैंपियंस की, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो हार का सामना भी करते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जीत हार तो लगी रहती है, तो हारने के बाद भी एक खिलाड़ी में खेल भावना क्यों जरूरी होती है?
3: खेल में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं
2: जी जी।
3: हारने के बाद भी खेल भावना बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको असफलता से सीख लेकर बेहतर बनने और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है। यह सुनिश्चित करती है कि खेल का आनंद सिर्फ परिणाम तक ही सीमित ना रहे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता हार नहीं होती में लिखे हैं
2: जी जी।
3: उसका मैं दूसरा स्टेंजा केवल बताता हूँ मैं
2: जी जी।
3: असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो
2: जी।
3: जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती।
2: क्या बात है। अच्छा सर, जैसे ओलंपिक में एक नियम है डोपिंग नहीं, तो डोपिंग नहीं का क्या अर्थ है?
3: ओलंपिक में नो डोपिंग का नियम का अर्थ है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता, ताकत या प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए किसी भी प्रतिबंधित दवा या अवैध तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मुख्य उद्देश्य सभी खिलाड़ियों को एक समान और निष्पक्ष मौका देना है ताकि किसी को दवाओं के इस्तेमाल से अनुचित लाभ ना मिल सके। वर्ल्ड लेवल पे वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नेशनल लेवल पे नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग। इसमें क्या है कि हर साल कुछ दवाओं का लिस्ट आता है कि जो कि खिलाड़ियों को नहीं लेना होता है, अगर उनके सैंपल में पाया जाता है तो उनपे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो खिलाड़ियों को इससे बच के रहना चाहिए और अपने तरफ से नेचुरल तरीके से खेल को क्लीन स्पोर्ट्स में को बढ़ावा देना चाहिए
2: जी जी। सर खिलाड़ियों से इतर अगर हम आमजन की बात करें तो आमजन के लिए ओलंपिक कितना महत्व रखता है?
3: आमजन के लिए मैम ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि वैश्विक एकता और प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। यह आम लोगों को कठिन संघर्ष, देशभक्ति, अनुशासन और मानवीय मूल्यों का सीधा पाठ पढ़ाता है
2: जी।
3: यह उत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों को एक बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ओलंपिक के दौरान जब किसी देश का एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है और राष्ट्रगान बजता है तो यह पूरे देश के आम नागरिकों को एक सूत्र में बांध देता है। यह खेल मंच देश, जाति, धर्म की सीमाओं से परे जाकर लोगों में देशभक्ति, सामुदायिक भावना का संचार करता है। मुझे याद है हम लोग जब नीरज चोपड़ा का इवेंट चल रहा था और पोडियम पे जब नीरज चोपड़ा फर्स्ट प्लेस पे स्वर्ण पदक पे कब्जा किया और उस टाइम भारतीय तिरंगा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है
2: जी जी।
3: और जनगण मन हो रहा है तो ये नीरज चोपड़ा पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और लोग देख रहे हैं और उस कई लोगों की आंख से आंसू आ रहा है क्योंकि
2: जी जी।
3: पहला बार जनगण मन ओलंपिक में बज रहा है तो ये बहुत बड़ा सम्मान का बात है, इससे बड़ा महत्व और नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल
3: है।
2: आप सर उस दृश्य को बता रहे हैं और मैं उसको महसूस कर रही हूँ और जिस तरीके से मेरे भी शरीर में रोमांच हो आया है, वाकई ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है, गर्व का पल होता है। अच्छा सर, इस साल की जो थीम है चले आगे बढ़े, आम जनता के लिए इसका क्या संदेश है?
3: चले आगे बढ़े थीम का मूल संदेश आम जनता को विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, निरंतरता और प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यह थीम चुनौतियों से हार न मानकर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान करती है।
2: अच्छा सर, अगले ओलंपिक की मेजबानी के लिए हमारे देश की, भारत की क्या कुछ तैयारियां हैं?
3: मैम, भारत 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। मेजबानी हासिल करने के लिए भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। औपचारिक रूप से अहमदाबाद को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
2: अच्छा।
3: यहाँ के सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम परिसर को ओलंपिक स्तर के बुनियादी ढांचे में बदला जा रहा है। सिर्फ आयोजन स्थलों तक सीमित न रहकर सरकार खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसे अभियानों के जरिए भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मुहैया करवा रही है ताकि 2036 में भारतीय दल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहे।
2: सर, अगर हम बुनियादी बात करें, आधारभूत बात करें, जैसे विद्यालय या कॉलेज स्तर पर ओलंपिक दिवस को कैसे मनाना चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो इन खेलों से जुड़ सकें?
3: विद्यालय या कॉलेज स्तर पर ओलंपिक दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रम के रूप से नहीं बल्कि बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति आजीवन रुचि विकसित करने के अवसर के रूप में मनाया जाना चाहिए। ओलंपिक आंदोलन का मुख्य संदेश है चलो, सीखो और खोजो। इस दिन हम ओलंपिक डे रन करवा सकते हैं जिसमें 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक सामूहिक दौड़ कर आयोजित करें जिसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी भाग ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहभागिता पर जोर दें, सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दें ताकि उनमें
2: उत्साह रहे। जी जी जी। अच्छा सर, ओलंपिक तक पहुंचने के लिए एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं उसके सामने?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। एक भारतीय खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक तक पहुंचना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ओलंपिक पदक तो बाद की बात है, केवल क्वालिफाई करने के लिए खिलाड़ी को अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रतिभा की पहचान, सही मार्गदर्शन, आर्थिक चुनौतियां, खेल और शिक्षा में संतुलन, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाओं की कमी, पोषण रिकवरी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, चोट का खतरा, मानसिक दबाव और ओलंपिक क्वालिफिकेशन इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत सारे चुनौतियां आते हैं मैम।
2: अच्छा सर, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जो गांव के बच्चे हैं उन तक ओलंपिक खेलों को हम कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज्यादा बाधाएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो ये बाधाएं चुनौतियां कैसे वहां पर कम की जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं?
3: गाँव के बच्चों तक ओलंपिक खेलों को पहुँचाने के लिए बुनियादी ढांचों का विकास करना चाहिए
2: जी।
3: स्थानीय स्तर पर प्रतिभा खोज करना चाहिए, पोषण स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और आर्थिक सहायता प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण है।
2: सर, किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो डीमोरलाइज सबसे पहले होते हैं, हमारे युवा खिलाड़ियों को क्या एक वाक्य में सलाह देना चाहेंगे कि जो उनके लिए सकारात्मक वाक्य हो?
3: मैं युवा खिलाड़ियों के लिए मेरी एक वाक्य में सलाह है, आप कड़ी मेहनत करें, निरंतरता रखें और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही गुण आपको किसी भी खेल में एक समान खिलाड़ी से एक चैंपियन बनाते हैं। तो इनका रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, इनके बिना आप चैंपियन बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं।
2: जी जी। इसकी शुरुआत कैसे होती है सर, ये जो, क्योंकि आपने जैसे कहा नियमितता, अनुशासन, ये तो बहुत बाद की बात हो जाती है, जब कोई खिलाड़ी जब खेल से जुड़ता है तो शुरुआती चरणों में क्या कुछ खास बातें होती हैं जिनका वो ध्यान रख सकता है, रखना चाहिए उसे ध्यान?
3: पंक्चुअल रहना चाहिए
2: जी,
3: जैसे कोच बताते हैं उनके नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है
2: जी जी,
3: तो आप किसी भी क्षेत्र में, खेल तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन का, निरंतरता का, एक दिन मेहनत करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक दिन डाइट खा के कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज में लगातार लगातार लगातार लगातार करते रहेंगे
2: जी जी,
3: सिस्टम से करते रहेंगे। कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस डज मेक परफेक्ट। आप केवल प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर सही प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आपको सही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और जो आपके प्रशिक्षक हैं उनके बताया गया, क्योंकि वो आपका विजन कई आगे देख रहे हैं, आप आज का देख रहे हैं, वो आगे का देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बनेंगे, तो हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद भी जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सलाह दी आपने हमारे युवा साथियों को। अच्छा सर, 10 सालों के बाद भारतीय खेलों का भविष्य आप कैसा देखते हैं?
3: अगले 10 वर्षों में भारतीय खेलों का भविष्य बेहद उज्ज्वल और बहुआयामी नजर आ रहा है, जहां भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में उभर सकता है। हालिया रुझानों और कार्यक्रम को देखते हुए भारत आगामी ओलंपिक खेलों में दोहरे अंकों में स्वर्ण पदक और कुल पदकों की संख्या में भारी वृद्धि करने की राह पर है। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स में भारत लगातार 3 देशों में अपनी जगह पक्की कर सकता है। सरकार भी खेलो इंडिया योजना, टॉप्स कार्यक्रम जैसे सरकारी प्रयासों से जमीनी स्तर से एथलीटों को आर्थिक मदद और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मुहैया करवा रही है।
2: जी जी।
3: क्रिकेट के तर्ज पर हॉकी इंडिया लीग, प्रो कबड्डी लीग और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल जैसे आयोजनों से खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है। इन सब से हम कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है।
2: अच्छा सर, ओलंपिक के 3 मूल्य सिद्धांत हैं, उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता। अब जैसे कि आप खुद एक कोच हैं, तो ये आप अपने बच्चों को, अपने जो प्रशिक्षक आते हैं, बच्चे जो हैं सीखने वाले हैं, उनको आप कैसे ये चीज़ सिखाते हैं?
3: प्रशिक्षण के दौरान ओलंपिक के 3 मूल्य उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता को केवल भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों, रोजमर्रा के खेल अभ्यास और टीम बिल्डिंग अभ्यासों के माध्यम से सिखाया जाता है
2: जी।
3: ताकि एथलीट शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। इन मूल्यों को प्रशिक्षण सत्रों में शामिल करने के कुछ तरीके हैं, जैसे उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ केवल जीतना नहीं बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना और निरंतर सुधार करते रहना है। सम्मान में नियमों का पालन करना, अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति निष्पक्षता और स्वयं का सम्मान शामिल है। अभ्यास के दौरान सभी साथियों, कोचों, यहाँ तक कि हारने के बाद भी विरोधी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने या गले लगाने की आदत डाली जाती है।
2: जी जी।
3: खेलों में दोस्ती का मतलब प्रतिद्वंद्विता के बीच की कटुता को भुलाकर आपसी समझ और एकता को बढ़ावा देना है। ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ग्रुप टास्क दिए जाते हैं जहां खिलाड़ियों एक दूसरे को मदद करनी पड़ती है। IOC द्वारा चलाए जा रहे ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत भी खेलों को शिक्षा और जीवन के मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है।
2: जी जी। अच्छा सर, हम स्कूल के या अपने घर के किसी एक छोटे बच्चे को देखें तो उसकी सही उम्र क्या हो सकती है कि वो एक ओलंपिक में जाने का सपना देख सकता है या उन खेलों से जुड़ सकता है?
3: ओलंपिक का सपना देखने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती
2: जी,
3: लेकिन उस सपने को समझने और उसके लिए व्यवस्थित तैयारी शुरू करने की एक उपयुक्त उम्र अवश्य होती है।
2: जी जी।
3: सामान्यतः 6 से 10 वर्ष खेलों से प्रेम, मजा और बुनियादी शारीरिक कौशल विकसित करने की उम्र होती है। 11 से 14 वर्ष बच्चा ओलंपिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को समझने लगता है। 15 से 18 वर्ष लक्ष्य निर्धारण, व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रदर्शन पर आधारित योजना की उम्र होती है। 18 वर्ष के बाद खिलाड़ी अपनी क्षमता, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर ओलंपिक योग्यता के दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ता है। एक कोच के रूप में मैं कहूँगा कि ओलंपिक का सपना 8-10 वर्ष की उम्र से बोया जा सकता है, लेकिन ओलंपिक का दबाव नहीं, उस पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए
2: जी।
3: पहले बच्चों में खेल के प्रति आनंद, अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की आदत विकसित करनी चाहिए।
2: सर, बतौर कोच आप किसी बच्चे की प्रतिभा को कैसे पहचानते हैं?
3: किसी बच्चे के खेल प्रतिभा पहचानना केवल उसकी वर्तमान जीत हार देखकर नहीं किया जाता, बल्कि उसके भविष्य में उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के पोटेंशियल देखकर किया जाता है। एक कोच के रूप में मैं निम्न बातों पर विशेष ध्यान देता हूँ, जैसे शारीरिक गुण, उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई कितनी है, शरीर की बनावट कैसा है, दौड़ने कूदने फेंकने की शारीरिक क्षमता कैसी है, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार बच्चा तकनीकी रूप से कमजोर होता है लेकिन उसकी प्राकृतिक गति और मूवमेंट उसे विशेष बनाती है। मानसिक गुण, बच्चों में मेहनत करने की इच्छा, अनुशासन, हार के बाद वापस उठ खड़े होने की क्षमता, आत्मविश्वास, यह गुण अक्सर शारीरिक प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
4: जी।
3: पैशन, कुछ बच्चों में खेलों के प्रति बचपन से जुनून होता है।
4: जी, जी।
3: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। मैं हमेशा यह देखता हूँ कि बच्चा आज कितना अच्छा है से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह हर 6 महीने या 1 साल में कितना अपने आप में सुधार कर रहा है। इस तरह का पोटेंशियल जो है आगे चल के बहुत आगे अच्छा बढ़ता है।
4: जी, जी।
3: प्रतिभा पहचान का एक सरल सूत्र है, टैलेंट इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस एटीट्यूड प्लस एडेप्टेबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। इन चारों का मेल किसी बच्चे को भविष्य का चैंपियन बनाता है। मैम,
4: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। प्रतिभा का जो संधि विच्छेद आपने किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। और सर, चलते चलते अब हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं।
3: मैम, मैं एथलीटों को ट्रेनिंग वैज्ञानिक तरीके से चरणों में विभाजित करके देता हूँ, जिसमें खिलाड़ी के फिटनेस स्तर, उम्र और लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी हम एक टारगेट बनाते हैं तो उसका एक पीरियडाइजेशन बनाते हैं।
4: जी, जी।
3: अगर हम 1 साल के बाद हम टारगेट कुछ रखे हैं और आज उसका क्या है, तो उसको हम टुकड़े टुकड़े में विभाजित करते हैं, जिसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। प्रिपेटरी फेज, बिल्डिंग फेज, प्री कम्पिटिशन फेज, कम्पिटिशन फेज। प्रिपेटरी फेज में हम क्या क्या कराएंगे, कंटेंट क्या होगा, अभी उसका फिटनेस लेवल कैसा है, और इसमें अगर जैसा हम करना चाह रहे हैं सही इम्प्रूव कर रहा है तो अगला फेज में कैसा होगा, उसका पूरा टोटल प्लान बना रहता है। उसको प्लान करके और उसके साथ उसका डाइट कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। उसमें केवल कोच ही नहीं, पूरा टीम काम करती है। उसमें साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और रिकवरी एक्सपर्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, पूरे टीम मेंबर मिलके हम किसी व्यक्ति को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो राष्ट्रीय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीत सके।
4: तो श्रोताओं, ओलंपिक दिवस जो है वो सिर्फ 23 जून का ही नहीं है बल्कि हर दिन की सोच है। इस साल की थीम, जैसे कि हमने आपको बताया, चलें आगे बढ़ें। तो आइए इसी थीम के साथ हम भी आज से ही शुरुआत करते हैं। तो श्रोताओं, आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालिए, टहलें, योग प्राणायाम करें या फिर अपने लिए कोई खेल जरूर खेलें, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी मैदान तक जरूर लेकर जाएं। श्रोताओं, आज विश्व ओलंपिक दिवस पर हमसे बात कर रहे थे हमारे आज के अतिथि महोदय श्री एस के प्रसाद, जो मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी।
3: धन्यवाद मैम।
4: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब सुनिए राष्ट्र गौरव का गान।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, मध्य प्रदेश के लिए बड़े सम्मान की बात है कि यहाँ के 64 योगिनी मंदिरों को अब दुनिया में देखा और सराहा जा रहा है। दरअसल हाल ही में 64 योगिनियों पर आधारित 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आर्टिस्ट डॉक्टर बीना उन्नी कृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया है। संस्कृति विभाग और काली ट्रस्ट के सहयोग से बनी डॉक्यूमेंट्री मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर और उससे जुड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाती है। इसकी खास बात यह है कि इसकी शुरुआत 64 योगिनियों की पेंटिंग से हुई थी। इन्हीं 64 मूल चित्रों की प्रदर्शनी कुछ महीने पहले भोपाल के भारत भवन में सप्ताह भर आयोजित की गई थी, जिसे कला प्रेमियों ने खूब सराहा था। नर्मदापुरम रोड स्थित वायुपुत्र स्टूडियो में एक खास महफिल सजी, जहां सुर, शब्द और एहसास एक दूसरे में घुलते नजर आए, मानो कोई सूफियाना दरिया अपनी रवानी में बह रहा हो। रविवार को गजलों और नज्मों से सजी इस संगीतमय शाम में श्रोता केवल दर्शक नहीं रहे, बल्कि हर शेर, हर धुन और हर आलाप के साथ इस सफर के हम सफर बन गए। गायिका श्रेया धनोकर, जिनकी मखमली आवाज ने महफिल को शुरू से अंत तक बांधे रखा। महफिल का आगाज मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो से हुआ। इसके बाद चांदनी रात की नर्म रोशनी, मुझसे पहली सी मोहब्बत की गहराई और सलोना सा सजन है और मैं हूँ जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। शाम आगे बढ़ी तो दिल चीज क्या है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे और जाने क्या बात है, जैसे कालजयी गीतों और गजलों ने इस महफिल को एक नई रंगत दी। जहां शब्द केवल कहे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वहीं प्यार का पहला खत लिखने में और हमको किसके गम ने मारा ने दिल की उन अनकही बातों को आवाज़ दी।

भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा और सुर साधना के अद्वितीय रंगों से सराबोर 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन अनहद भारत भवन द्वारा 3 से 5 जुलाई तक किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के सुविख्यात शास्त्रीय गायकों की प्रस्तुतियां संगीत प्रेमियों को राग, लय और भावों से परिचित कराएंगी। समारोह में 3 जुलाई को शाम 7 बजे स्वाति तिवारी के गायन से शुरुआत होगी। इसके बाद शाम 7:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका पद्मश्री गायिका अश्विनी भिड़े देशपांडे प्रस्तुति देंगी। 4 जुलाई को शाम 7 बजे संगीत प्रेमियों को एक दुर्लभ गायन जुगलबंदी सुनने का अवसर मिलेगा। आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार अपनी संयुक्त प्रस्तुति के माध्यम से सुरों का संवाद रचेंगी, जिसमें परंपरा और सृजनात्मकता का समन्वय दिखाई देगा। अंतिम दिन 5 जुलाई को शाम 7 बजे डॉक्टर ऋषि मिश्र अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद 7:45 पर मंजरी असनारे केलकर अपनी सधी हुई और भावपूर्ण गायकी से समारोह का समापन करेंगी। श्रोताओं, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और नटराज संगीत विद्यालय की कला प्रसार कथक प्रशिक्षण कार्यशाला सोमवार से आरंभ हुई। कार्यशाला 28 जून तक संचालित होगी। सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के अंतिम 2 दिनों देश की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्मश्री शोभना नारायण प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगी। उनके विशेष प्रशिक्षण सत्र दुष्यंत कुमार ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला का संचालन अमिता खरे द्वारा किया जा रहा है। हस्तक और प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पर आधारित कथक प्रस्तुति का अभ्यास करवाया गया।

श्रोताओं, बैठक द आर्ट हाउस द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित 5 दिवसीय कार्यशाला राग यमन का आयोजन 24 से 29 जून तक किया जाएगा। वर्कशॉप प्रतिदिन 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक बैठक द आर्ट हाउस अरेरा कॉलोनी में आयोजित होगी। इसमें प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शामिल हो सकेंगे। ध्रुपद गायिका गुरु सुरेखा कांबले राग यमन की संरचना, विशेषताएं और व्यावहारिक पक्ष से प्रतिभागियों को परिचित कराएंगी। इसमें राग का परिचय, आरोह अवरोह, पकड़, चरण, सरगम, अभ्यास, बंदिशों के साथ साथ शास्त्रीय और फिल्मी गीतों में राग यमन के प्रयोग की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से परिचित कराना है।

ट्राइबल म्यूजियम के मेन गेट पर प्राचीन कथा का प्रदर्शन किया गया है। गोंड गाथा में बताया कैसे केंचुए ने मिट्टी छीनकर केकड़े ने रची पृथ्वी। ट्राइबल म्यूजियम के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर संग्रहालय के प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द गोंड जनजाति की पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्राचीन कथा को शिल्प और नए चित्रांकन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ये कथा जल प्रलय के बाद धरती के फिर से अस्तित्व में आने की दिलचस्प मान्यता को दर्शाती है। दरअसल गोंड समुदाय ने पृथ्वी के विकास और जल प्रलय के इस ऐतिहासिक सत्य को अत्यंत रोचक कथा के रूप में संरक्षित किया है। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण भी इसमें है। ये मिथक इस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सत्य का प्रतीक है कि भीषण जल प्रलय के दौरान सब कुछ नष्ट हो गया था, तब केवल जलचर यानी पानी के जीव और आकाशगामी जीव पक्षी ही सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर बच पाए थे। बाद में इन्हीं जीवों के माध्यम से धरती पर फिर से जीवन आरंभ हुआ। गोंड मान्यता के अनुसार जब चारों ओर केवल जल ही जल था और पृथ्वी का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब वृक्ष के सबसे ऊपर बैठे एक कौवे ने भगवान शंकर को बताया कि पृथ्वी बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी कछुए के पास है जो पूरी मिट्टी खा गया है। कौवे ने वो मिट्टी उड़कर भगवान शंकर को दी। भगवान शंकर ने उस मिट्टी को स्पर्श कर गोला बनाया और उसे पानी में डाल दिया, जिससे पुनः धरती का निर्माण हुआ। तो इस तरह ट्राइबल म्यूजियम के मेन गेट पर इस प्राचीन कथा का प्रदर्शन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। अब परिक्रमा कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 एफएम पर, सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं हिंदी भवन में, जहां रविवार को रचना पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
1: जीवन की हर कठिन परीक्षा संदेश यही दे जाती है, जीवन की हर कठिन परीक्षा संदेश यही दे जाती है, संघर्षों की पावन मिट्टी में ही सफलता मुस्काती है, संघर्षों की पावन मिट्टी में ही सफलता मुस्काती है। धन्यवाद।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: जो तबके बीच जलता है वह दीपक बन जाता है, संकट से जो नहीं डरे वह ऊंचा उठ जाता है, संकट से जो नहीं डरे वह ऊंचा उठ जाता है। जब जब समय ने चोटें दी मन थोड़ा लाचार हुआ, जब जब समय ने चोटें दी मन थोड़ा लाचार हुआ, लेकिन हर संघर्ष के बाद साहस और अपार हुआ, लेकिन हर संघर्ष के बाद साहस और अपार हुआ। सोना भी तपकर अग्नि में कुंदन सा दमक जाता है, सोना भी तपकर अग्नि में कुंदन सा दमक जाता है, वैसे ही संकट मानव को और श्रेष्ठ बना जाता है, वैसे ही संकट मानव को और श्रेष्ठ बना जाता है। पर्वत जैसी कठिन राह हो, पर्वत जैसी कठिन राह हो या गहरी हो रात कहीं, पर्वत जैसी कठिन राह हो या गहरी हो रात कहीं, हिम्मत वाले रुकते कब हैं, झुकते भी हालात नहीं, झुकते भी हालात नहीं। जो संकट में धैर्य न खोए, जो संकट में धैर्य न खोए वही सच्चा वीर कहलाए, जो संकट में धैर्य न खोए वही सच्चा वीर कहलाए। सूखी धरती पर भी अपने श्रम से फूल खिला जाए, सूखी धरती पर भी अपने श्रम से फूल खिला जाए। इसलिए जब संकट आए मन में भय मत आने दो, इसलिए जब संकट आए मन में भय मत आने दो, अपने साहस और विश्वास का दीप सदा जल जाने दो, अपने साहस और विश्वास का दीप सदा जल जाने दो। जीवन की हर कठिन परीक्षा संदेश यही दे जाती है, जीवन की हर कठिन परीक्षा संदेश यही दे जाती है, संघर्षों की पावन मिट्टी में ही सफलता मुस्काती है, संघर्षों की पावन मिट्टी में ही सफलता मुस्काती है। धन्यवाद।
2: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।

होता जो बच्चों को धूप या मूसलाधार बारिश से बचाता है। पिता एक एहसास है सुरक्षा का, एक गहन अनुभव है बच्चों का कि उनके सर पर है हाथ किसी का, जो हर पल दिलाता है याद कि तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। पिता एक वृक्ष की तरह होता है जो बच्चों को, परिवार को मूल होकर प्राण वायु देता है। परिवार पर आने वाले आंधी तूफान और संकटों का मुकाबला करने की कोशिश अकेला ही करना चाहता है, ताकि परिवार को किसी भी तनाव का जरा एहसास न हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पिता भगीरथ प्रयत्न करता है। वो विशाल वृक्ष की तरह देता है नए उगने वाले पत्तों की तरह अवसर, जिसके नीचे बैठकर उसकी संतानों की संतानें भी पैतृक संपत्ति की तरह या विरासत की तरह उसका उपभोग नहीं सदुपयोग करें, जबकि छाते को जरूरत पड़ने पर उपयोग करते हैं और उसके बाद रख देते हैं किसी कोने में या अलमारी में अगली बार की जरूरत के लिए। शायद छाते और वृक्ष में यही अंतर होता है कि वृक्ष उपयोग या उपभोग की वस्तु नहीं है, वृक्ष आपके लिए जब तक उसमें जीवन है सदैव उपस्थित रहता है। ऐसे ही गुरु पिता, ऐसे ही

संहारी हरम नाथम संहारी। इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री जमुना श्री आपको देवी को।

Halis'ten

बढ़ेगा जीवन

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।
2: अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे वीर क्रांतिकारी, ऐसे लोग जिन्होंने देश को जिया, देश को सोचा, जो किया देश के लिए किया, ऐसे लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप, और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोकसभा में प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक पारित किया, तो उसका तथ्यात्मक और भावनात्मक विरोध दर्ज कराने वालों में सबसे सशक्त वक्ता थे डॉक्टर मुखर्जी। उन्होंने सरकार पर निरंकुश दमन का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि ऐसा भीषण दमनकारी कानून तो केवल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के नाम से बनाया था। पंडित नेहरू ने उनके भाषण पर आपत्ति करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिवेश की तुलना पराधीन भारत से करना कहां तक उचित है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैंने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के विरोध में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो पराधीन भारत की केंद्रीय असेंबली में रॉलेट एक्ट के विरोध में ना कहा गया हो, जिसमें न वकील, न दलील और न ही अपील वाली उक्ति शामिल थी। और इतना कहकर फिर डॉक्टर मुखर्जी ने सदन से कहा कि क्या उस महान देशभक्त राष्ट्र पुरुष का नाम बताऊं जिसने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और जिसका तत्कालीन भाषण मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक के विरोध में पढ़ा था। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि उस महान नेता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर मुखर्जी की इस प्रमाण पुष्टि पर पंडित नेहरू आवक रह गए। श्रोताओं, हम आपको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आचार्य कृपलानी और डॉक्टर लोहिया का विरोध तो अपनी जगह था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी सही मायने में खरे नेता थे, क्योंकि वो देश के ऐसे विशाल समुदाय का सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व करते थे जो पंडित नेहरू की नीतियों से सहमत नहीं था। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर मुखर्जी सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष में गए थे। भारत की स्वाधीनता के बदले पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विशेष अनुरोध पर नेहरू जी मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने थे, लेकिन जब धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर 1950 में नेहरू लियाकत फैक्ट हुआ तो उसे बंगाल के 11 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात निरूपित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया था। उन्हीं के साथ एक और बंगाली मंत्री केसी नियोगी थे, जिन्होंने उनके साथ में ही इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन करके सन 1952 का पहला आम चुनाव लड़ा और इस प्रकार देश में द्विदलीय यानी कि दो दलीय प्रजातंत्र का सुपात्र करने की दिशा में बुनियादी योगदान दिया। उनका जनसंघ ही बाद में सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना।

0: को है।
1: और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 20 वर्ष की आयु में स्नातक पश्चात सन 1923 में लॉ की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे। एक विचारक, चिंतक, शिक्षाविद और लोकप्रिय प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती ही गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1934 में जब ब्रिटिश शासन चरम पर था तब कलकत्ता कॉरपोरेशन के लॉर्ड मेयर बने। सन 1939 में मात्र 38 वर्ष की आयु में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्र से बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे। सन 1940 में हिंदू महासभा में शामिल हुए। जिन्ना की पाकिस्तान घोषणा तथा उनके प्रति कांग्रेस की नीति से असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, मगर वो बातें डॉक्टर मुखर्जी की महान देशभक्त और दूरदर्शी राजनायक व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सांप्रदायिकता छू तक नहीं गई थी। उन्होंने सन 1941 से 42 में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के बृहत्तर राष्ट्रहित में हिंदू प्रतिनिधि की हैसियत से हक मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, जिसके नेता फजलुल हक ने जिन्हा के प्राक प्रस्ताव का समर्थन किया था। एक दमन अलग नजरिया रखते हुए भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए नेहरू मंत्रिमंडल में शिरकत की। उनकी चरित्रीय उदारता और राष्ट्र भक्ति की विलक्षणता को समझने के लिए स्वयं उनकी डायरी पढ़ना चाहिए, जो 1993 में लीक्स फ्रॉम ए डायरी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। सन 1942 में उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी हिंदू महासभा से भी असहमति जताई थी, क्योंकि उसने सन 1942 के आंदोलन का साथ नहीं दिया था। कार्यक्रम में वक्त है एक देशभक्ति गीत का।

यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दुखद निधन के विषय में बात करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद से वहाँ कुछ संवैधानिक विडंबनाएं थीं। उदाहरणार्थ वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक का जम्मू कश्मीर पर कोई दखल नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी इसे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के हित में नहीं मानते थे। बताते चलें हम आपको कि उस समय कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट सिस्टम लागू था। डॉक्टर मुखर्जी ने इसके विरोध में अगस्त सन 1952 में जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, या तो मैं कश्मीर को भारत का संविधान दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी ने अपनी जीवनी माई कंट्री माई लाइफ में डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर प्रकाश डाला है। वो लिखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लिए कूच किया। चूंकि उनके पास प्रवेश परमिट नहीं था जिसके वो विरोधी थे, इसलिए उन्हें 11 मई सन 1953 को पठानकोट पुल पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें श्रीनगर के बाहर एक मकान में नजरबंद किया गया। वहां वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और 23 जून सन 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनके निधन की परिस्थितियों पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का ये परिणाम अवश्य हुआ कि परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत के चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक के

0: श्रोताओं, ऐसा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी महान क्रांतिकारी की गाथा लेकर, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे दी दीजिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी।
1: याद करो कुर्बानी। याद करो कुर्बानी।
2: हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, देश पर सर्वस्व कुर्बान करने वाले लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, त्रिषा कौशिक जी। त्रिषा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: त्रिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आईं और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर क्यों और कैसे आईं इस फील्ड में?
3: मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा भोपाल से ही हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की NIT भोपाल से, फिर मैं BHEL भोपाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ मैंने लगभग 7 साल काम किया ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में। तो इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक बार यहाँ पे, एक भोपाल में ही मार्केट है, वहाँ मैं कुछ सामान खरीद के आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई। फिर सारे डायग्नोसिस हुए, सब टेस्ट हुए तो पता लगा मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम था, वो लगभग 5 था। तो वहाँ से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ट्रिगर हुए। एनीमिया तो था ही, साथ में धीरे धीरे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे, पैनिक डिसऑर्डर होने लगा, सीवियर सोशल एंग्जाइटी। और ये लगभग 8-10 साल, मतलब आप समझिए कि 18-19 साल से लेके लगभग 27-28 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जिसको हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा बोला जाता है, आई केम अक्रॉस दैट। और उसमें मुझे अपनी जो भी परेशानियां थी उसका सल्यूशन मिलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपने ही परेशानियों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते मैं इस फील्ड में आ गई।
2: ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या, एक बार आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं।
3: देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब ये है, पास्ट लाइफ, नाम से ही पता चलता है कि ये पिछले जन्म की कोई बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस जीवन काल में जो हम फेस करते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसके पीछे हमको बहुत बार लॉजिक नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पर वो टेस्ट कराएंगे अगर मेडिकली सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, पर इंसान तब भी तकलीफ में होता है।
2: ठीक है,
3: तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ पहले से आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये मतलब है कि जो इस जन्म, जैसे अभी का मेरा जन्म है त्रिषा का, उससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसका प्रभाव आज मेरे इस जीवन काल पे आ रहा है। तो हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसमें रिग्रेस पैक करते हैं सेशंस में, और फिर उसका पूरा तरीका होता है कि जो भी वहाँ ट्रॉमा हुआ या जो भी वहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जिससे आज जीवन पे प्रभाव आ रहा है, उसको हील किया जाता है। इसीलिए ये थेरेपी है।
2: आपने थेरेपी समझाई, तो जब जो लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है, या अगर हम उसके लिए मरीज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति जो इससे गुजरता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी आप इसको थोड़ा मतलब सरल भाषा में कहें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप उसे और समझाइएगा कि वो अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को उसके जीवन में पुनर्वृत्ति होती है, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहेंगे।
3: रिग्रेशन का मतलब देखिए ये होता है, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना।
2: हाँ,
3: तो मतलब जो भी इंसान है जो इस थेरेपी को अंडरगो कर रहे हैं वो अपने पास्ट लाइफ में
2: बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि हर तुरंत तो आदमी थेरेपी पे आया नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ एक सामान्य आदमी जिसके साथ ये होना शुरू हुआ है, तो जब वो आप, चलिए इस बात को ऐसे करते हैं कि जब उस जिस इंसान के साथ कोई भी इस तरह के थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो वो स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति, पहली बात तो वो कैसे डायग्नोस करे इस बात को कि उसे आपकी जरूरत है, और ये जो हो रहा है उसके पूर्व जन्म के थॉट्स, या जो आप कह रहे हैं कि उसे इस तरह की अवस्था में आ गया, ये आप कैसे डायग्नोस करते हो कि वो इस अवस्था में है?
3: जी, तो देखिए, जब भी कोई परेशानी में होता है, हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, और हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हम उस परेशानी से हम खुद डील नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारा आज सुबह उठ के सिर दुखा तो हम उठते ही तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते।
2: बिल्कुल,
3: हम पहले खुद कोशिश करते हैं कि डाइट ठीक ले लें, या हम ठीक से नींद नहीं हुई है उससे ठीक हो जाते तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी जीवन में है, पहले हम खुद डील करते हैं, जब हमें लगता है वो चीज़ हमारे बस की बाहर हो गई है तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं।
2: ठीक है,
3: अब देखिए क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट होता है। अच्छा। एक पार्ट है उसका। अच्छा। ठीक है, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अनुसार कोई भी इशू लाइफ में, कोई भी समस्या ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, या वो कोई रिलेशनशिप इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी समस्या, वो या तो पास्ट लाइफ से आती है या इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आती है, जिसको टेक्निकली इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है।
2: फॉरेन एनर्जी से क्या मायने आपका?
3: फॉरेन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमसे फॉरेन है, वो हमारी खुद की नहीं है।
2: अच्छा।
3: ठीक है, तो वो किसी जिंदा इंसान या एनिमल की एनर्जी हो सकती है, या वो किसी मरे हुए इंसान या एनिमल की ऊर्जा हो सकती है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
2: अच्छा।
3: ओके, तो कोई भी समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ या करेंट लाइफ ट्रॉमा या फॉरेन एनर्जी हो सकती है, या कोई तीनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो समस्या किसी इंसान को हो रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो हम थेरेपी में ही चेक करते हैं।
2: अच्छा, मतलब कोई
3: ऐसे
2: कोई
3: देख के मैं नहीं बता सकती कि आपका पास्ट लाइफ इशू है।
2: हाँ, मतलब आप जो भी, आपके जब वो उस अवस्था का मरीज आपके पास पहुँचता है तो आपकी थेरेपी का कोई हिस्सा है जिससे आप ये डायग्नोज कर पाते।
3: बिल्कुल, और उनके ये सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है, उनके अवचेतन मन से जाना जाता है कि ये जो पास्ट लाइफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
2: अच्छा,
3: देर इज अ टेक्निक टू इट।
2: ठीक है, ठीक है, वो एक मतलब टेक्निकल बात। तो कोई एग्जांपल देके आप, जैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, अगर आप अपना कोई केस याद करें जो आपके पास आए हों,
3: जी जी,
2: तो उनमें क्या आपने सिम्टम्स देखे, या फिर वो थेरेपी में क्या चीज़ें आपके सामने आई तो जिससे आपको पता चला कि ये केस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
3: जी, जैसे मेरे पास एक, मैं आपसे केस शेयर करती हूँ, उनके पास लाइफ में सब कुछ है।
2: हाँ,
3: ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में होना चाहिए, ठीक ठाक पैसा है और ठीक ठाक सेहत है, हम जैसे जिस ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिसे बोलेंगे जीना चाहते हैं, वो सब कुछ है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर्स होते हैं, यानी कि कहीं शॉपिंग करना, मूवी देखना, यू नो, कहीं घूमने जाना, तो वो सब वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो जब इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो एक लेयर उसकी पास्ट लाइफ की निकली और हमने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उस लाइफ टाइम में उनके जो पेरेंट्स थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे।
2: अच्छा।
3: ठीक है, और पेरेंट्स जो थे वो बहुत रईस परिवार के नहीं थे, मतलब बस चल रहा था जीवन कैसे भी, थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बच्चे ने डिसाइड किया, अच्छा इस लाइफ टाइम में वो फीमेल है, उस लाइफ टाइम में वो मेल थी।
2: अच्छा,
3: ठीक है, तो वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे माँ बाप तो इतने स्ट्रगल से निकल रहे हैं, तो बेटर है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाके रह लूँ ताकि खाना पीना सब वहाँ हो जाएगा। तो वो बच्चा मॉनेस्ट्री चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। अब जब वो वहाँ गया तो उसने एक वाव ले लिया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक खुद में ही एक शपथ ले ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं कर सकते।
2: अच्छा।
3: और ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री चला गया, उसने अपना बहुत आध्यात्मिकली, अपने आप पर बहुत स्पिरिचुअली काम किया, आध्यात्मिक उसमें ये बहुत ऊपर पहुंचे, बट मरते समय उनको एक दुख था कि मैंने स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया पर जो जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स भी हैं उसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बड़े तो छोड़ दो, मैंने कुछ जिंदगी को ठीक से भोगा नहीं।
2: वो यही थॉट्स उसको अपनी,
3: और वो इसके साथ मर गए।
2: अच्छा, ये पुरानी लाइफ में हुआ।
3: हाँ,
2: ठीक है।
3: अब इसके साथ वो इस सैडनेस के साथ चले गए। अब हुआ क्या था कि उस लाइफ टाइम में उन्होंने एक वाव ले लिया था।
2: वाओ, यानी शपथ की बारे में बात करें, ऐसा
3: शपथ मान, मतलब किसी और ने नहीं दिलवाई, जैसे हम अपने मन में ही एक
2: तय कर लिया था,
3: खुद तय कर लेते हैं कि मैं नहीं एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पा रहे, और उसके साथ वो जीवन खत्म हो गया। अब जब वो जीवन खत्म हो गया तो इस जिंदगी में किसी कारण से वो पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
2: अच्छा,
3: तो देखिए होता क्या है, हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ्स होती,
2: मतलब वर्तमान लाइफ में भी वो उसी अवस्था में आ गए जो पहले था, जब वहाँ भी उन्होंने माना था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा और एंजॉय नहीं कर पा रहा, और अब भी वैसे ही आ गए।
3: हाँ, पर अभी वैसे क्यों हुए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये पास्ट लाइफ उनकी ट्रिगर हो गई।
2: ठीक है,
3: और ये पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: हमें देखिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं पर वो सारी एक्टिवेटेड नहीं रहती।
2: ठीक है,
3: किसी कारण से वो इस जीवन काल में पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई और उनका थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, वो जो पर्सनालिटी थी उस जीवन काल की वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं प्लेजर्स ऑफ लाइफ या जीवन में जो भी भोगना है मैं उसको एंजॉय नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पाते। तो वो इस जीवन काल में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसको उसको जी नहीं पा रहे थे वो ठीक से।
2: इसको भी छोड़ दिया अच्छा होते हुए।
3: हाँ,
2: अब तो यहाँ तो सब कर सकते हैं, वो जो हो गया वो तो हो गया।
3: करेक्ट।
2: लेकिन अब वर्तमान में कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
3: करेक्ट। तो वो जैसे ही उनको पता चला अच्छा ऐसी पास्ट लाइफ थी, उन्होंने अब स्वयं से उन्होंने एक अपने
2: फिर मान लिया
3: कि मेरे को ये एंजॉय नहीं करना, तो वो इस जीवन काल को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे।
2: तो फिर वो किसी भी तौर पे आप तक पहुंचे, फिर आपने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा होगा।
3: हाँ,
2: यहीं से एक बात की निकल के आती कि ये तो वो केस है जो आपके पास आया था, जैसे कि अपन ने बात करी और आप हमने बात भी कही थी कि ऐसा कोई केस बताएं आप जो आपके पास आया हो ऐसा।
3: जी।
2: अगर हम नए किसी व्यक्ति की बात करते हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे मतलब काफी कम लोग हैं, लेकिन कई लोग कई मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कोई नया अगर कोई व्यक्ति इस चीज से सफर कर रहा हो, तो वो स्वयं या उसका घर का व्यक्ति कब ये तय करे कि उसे आपके पास जाना है? इसके कुछ कुछ सिम्टम्स उन्हें खुद मिलते हैं क्या, या अगर हम अभी बता पाएं अपने कार्यक्रम के माध्यम से
3: जी।
2: अगर वो अपने परिवार में या व्यक्ति में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो आप तक या आप जैसे किसी क्लिनिकल मतलब थेरेपिस्ट के पास पहुंच सकें।
3: देखिए क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, वो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो बहुत टाइम से दुख रहे हैं। सब कुछ कर लिया, मालिश करवा ली, सब करवा लिया, पर पैर दुख रहे हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण निकलेगा। तो वो कारण जो समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई विटामिन कम है, कुछ मिनरल कम है, जो भी है उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। तो चेतन मन जो होता है वो हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है। अब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके पीछे हम कितना भी तर्क लगा लें, लॉजिक लगा लें, हमको क्यों का जवाब नहीं मिलता। तो जब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, चैलेंज हो रहा है, जिसके पीछे क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है।
2: इससे एक बात और निकल के आती है त्रिशा जी के, मतलब क्या माने हम के भाई, देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी कि कोई ये फील करता है, जैसे आपने बताया कि जब उसको अपने क्यों का उत्तर ना मिल रहा हो, तो सामान्यतः लोग आपके पास ही थेरेपी के लिए आ जाएं पहले, ये बेटर है, या वो साइकेट्र, क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट को आप जानते हैं, लोग सामान्यतः साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले ये समझ पाएं
3: जी जी,
2: कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं इस थॉट्स को लेकर या पहले किसी थेरेपिस्ट से मिल लें।
3: देखिए ये जो है ये डिसीजन इंसान ही लेगा जिनको तकलीफ हो रही है, पर मैं थोड़ा सा
2: अच्छा, इसको अगर ऐसे बात करें कि इसको आप जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आप इसे किस श्रेणी में रखते हैं, क्या उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या केवल इसको कैसे मतलब अलग थिन लाइन होगी संभवतः। मैं इसको यूं भी कह लेते हैं कि आपके पास आने वाला जो मरीज है वो और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला मरीज, इनके बीच में कोई एक थिन लाइन है,
3: पूछे ना तो आप, मैं जो जवाब दे सकती हूं
2: वो बताइए आप, क्या अंतर होगा उनमें, कैसे अंतर करें एक सामान्य आदमी और आप।
3: देखिए जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं या ब्रेन की क्या केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, और वो मेडिसिंस भी देते हैं।

हमारा चेहरा है वो अलग दिखने लगता है। तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो मैटर को डिटरमिन करती है। तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सारे स्तरों पे काम करते हैं। हम थॉट पे भी काम करते हैं यानी कि मानसिक स्तर पे, हम इमोशंस पे भी काम करते हैं यानी कि भावनात्मक स्तर पे, हम ऊर्जा के स्तर पे भी काम करते हैं जिसको एनर्जी बॉडी या प्राण शरीर बोला जाता है, और हम फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं। अब देखिए किसके पास जाना चाहिए, ये हमेशा जो इंसान तकलीफ में है ये उनका डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसने रिजल्ट नहीं दिए होते तो वो अभी तक गायब हो गए।

0: आगे बढ़ेंगे। तो यूजुअली ये देखा गया है कि किसी भी एक इशू को हील करने के लिए ऑन एन एवरेज 6 से 8 सेशंस तो लग ही जाते हैं।
1: सेशन की हम वो जानना चाह रहे थे, अगर संभव हो तो आप इसे हमें जितनी सरल भाषा में बता पाएं कि वो सेशन किस तरह का होता है।
0: देखिए, जो सेशन होता है, पहले सेशन में तो मैं पर्सनली जो भी समस्या लेके आते हैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है, ताकि पता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरे सेशन से जब हम सम्मोहन चिकित्सा वाले सेशन शुरू करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो उसका पार्ट होता है, हर सेशन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है और शुरुआत में 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें जो भी इंसान है जिनको तकलीफ है उनको एक सम्मोहन की स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हिप्नोसिस के स्टेट में या ट्रांस के स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को एक्सेस कर लेते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ कमांड देते हैं और जैसे जैसे कमांड दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन उससे रिलेटेड चीज़ें सरफेस पे लाने लगता है। तो अगर कमांड दिया कि आपका वो भाग ऊपर आएगा जिसने इस जीवन काल में पहली बार गुस्सा महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है। अभी मैं आपसे कॉन्शियसली पूछूंगी आपको जिंदगी में पहली बार कब गुस्सा महसूस हुआ, आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, पर अवचेतन मन को पता होता है। तो वो 2 साल की उम्र में हुआ, 1 साल की उम्र में हुआ कि 4 साल की उम्र में हुआ, जब भी पहली बार गुस्सा महसूस हुआ वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो पार्ट। तो 2 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया सपोज, फिर उसको पूरा हीलिंग करने का प्रोसेस होता है। तो ऐसे एक सेशन जो होता है वो 1.5-2.5 घंटे का होता है। इसमें मन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ भी दवाइयाँ नहीं दी जाती, इसमें कुछ भी एनेस्थीशिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति को लेके, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यूज टू हील एनी इशू।
1: अभी जितनी बात हुई उसमें प्रश्न 2 निकल के आपकी बात से, उसमें पहला प्रश्न मैं आपसे जाना, फिर उस पर दूसरे पाएंगे पितृदोष वाले पे। पहला ये कि जो आपका ये थेरेपी है ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है अभी?
0: देखिए, हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है।
1: अच्छा,
0: तो हिप्नोसिस को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें,
1: मतलब मेडिकल साइंस भी उसका पार्ट है।
0: उसमें ब्रेन वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है, ठीक, वो जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की,
1: मतलब साइंटिफिकली प्रूव है। एक तो
0: हिप्नोसिस का स्टेट साइंटिफिकली प्रूवन है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की अगर बात करेंगे तो उसका पीछे साइंस हम नहीं लगा सकते, पर उसके देखिए उसके क्या प्रूफ आए हैं कि बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ देखा,
1: ठीक है,
0: और वो जगह उन्होंने करेंट लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वो गए भी नहीं उस जगह पे, पर उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जगह देखी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे एक ऐसा घर है, उसके नीचे

0: ये सामान गड़ा हुआ है, और जब उन्होंने जाके उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो वो चीज़ें एक्चुअली थी। दूसरा, ये बहुत ही आम सवाल होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। देखिए, एज ए थेरेपिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद अगर जिनको जो समस्या थी वो ठीक हो गई है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट,
0: वो सबसे बड़ा प्रूफ।
1: ये सबसे बड़ी सही बात, मतलब एक थेरेपी हमने करी वो खर, वो आपके पॉइंट पे अच्छी बात। दूसरी चीज़ पूछ रहा हूँ, पितृदोष का भी आपने जिक्र करा था।
0: जी जी।
1: तो आपकी जो थेरेपी है इसमें पितृदोष पर भी आप जब ध्यान देते हैं तो क्या क्या माने, ये ज्योतिष से जुड़ी हुई है आपकी थेरेपी?
0: देखिए, ये ज्योतिष से तो नहीं जुड़ी हुई है, वो अलग ही साइंस है। यहाँ पे हम फिर से अवचेतन मन से देखते हैं कि जो भी समस्या आ रही है उसका कोई एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है, पितरों से तो नहीं आ रही है, और अगर वो पितरों से आ रही है तो फिर उसको भी हील करने का एक तरीका होता है। पर हम इसमें किसी का नेटल चार्ट या किसी की हम पत्रिका देख के कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अवचेतन मन के जरिए ही पता लगाया जाता है कि ये एंसेस्ट्रली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: मतलब कुल मिला के वो, हम अगर सरल भाषा में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे श्रोता कोई बात समझ में आ पाए कि वो उनके पेरेंट्स से या पेरेंटल से किस तरह से अगर जुड़ा है तो या नहीं है।
0: जी,
1: यही मुझे लगता है इसका यहाँ
0: पेरेंटल या उनसे भी पहले कोई भी जनरेशन
1: हो
0: जाता है,
1: कभी कभी या दो दो तीन पीढ़ी या जो भी माने उसे,
0: कभी कभी 14वीं 15वीं जनरेशन पहले से चीजें आती हैं।
1: एक चीज और, जो आपका ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, इससे आपने जब देखा होगा आपके पास फर्ज करें 2 सेशन 30 सेशन या आपके पास अलग अलग तरह के लोग आए होंगे जो इससे ग्रसित हैं, तो उनको आपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी एक्स टाइम के बाद देखा, तो आप देखते हैं कि उनमें परिवर्तन आया, लाभ आया, मतलब जो जिस अवस्था
0: में खुद ही समझ में आ जाता है।
1: अच्छा, ये वो कहते हैं आपसे?
0: हाँ, देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वायरल फीवर हो गया।
1: हाँ,
0: हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, 3 दिन का फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया। वो बोलते हैं 3 दिन सुबह शाम जो भी दवाइयां हैं वो खा के आना, 3 दिन बाद बताना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या दवाइयां बंद कर देते हैं। तो सेम इस थेरेपी में भी ऐसे ही होता है कि हर सेशन के बाद जिनको जो समस्या थी उनको समझ में आता है कि अब मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आ गया है।
1: अच्छा,
0: तो ये ज्यादा मायने रखता है कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और थेरेपिस्ट उनके बारे में कैसा फील कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो समस्या में थे
1: वो कैसा फील कर रहे हैं,
0: वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मेन है,
1: बंद हो गया या कोई वाली बात।
0: करेक्ट।
1: अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कोई अपना केस याद करें तो किस कोई, मतलब अगर आप एग्जाम्पल देके बता पाए कि परिवर्तन उनमें वो आए हों आपकी थेरेपी लेने के बाद,
0: किस तरीके का परिवर्तन?
1: आप अगर अपना कोई भी व्यक्ति को याद करती हैं कि वो आपके पास आए और आपने उनको 2 या 3 X नंबर ऑफ सेशंस दिए, तो उसके बाद उनमें वो चेंजेस दिखे आपको, तो आप बता पाएंगे कि जब वो पहली दफ़ा आपके पास आए थे तो उनके अंदर ये था और फिर 3 सेशन के बाद ये परिवर्तन आ गया या ये लाभ उनको मिला उस तरह से?
0: ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, जैसे जब आते हैं तो कुछ होते हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं।
1: अच्छा।
0: और कुछ सेशंस के बाद देखो तो उनका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि शरीर में कुछ तकलीफ है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और 1-2 सेशंस होते हैं और उसके बाद उनको नी पेन चला गया। एक का तो मैंने देखा था कि 1 सेशन में नी पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: एक का देखा था 4 सेशन में लोअर बैक पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं।
1: कोई ऐसा कोई केस याद करके बताएं आपके, कोई विशेष जिसने आपको बहुत प्रभावित करा हो आज तक के आपने जितने सेशंस लिए, जितने केसेस आपके पास आए, उन केस में कोई स्पेशल केस आपको याद है कि उसमें इस अवस्था से फिर वो बेहतर हुए?
0: जी, ये मैंने काफ़ी जगह शेयर किया है। तो मेरे पास एक आई और उनको बहुत तकलीफ होती थी इस मायने में कि उनका सिर बहुत दुखता था।
1: अच्छा।
0: और फिर उनको एक हाथ बार सीजर्स भी हुए। वो ना बहुत टाइम से इस चीज़ से गुजर रही थी।
1: हाँ।
0: और उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर उनको कोई
1: फायदा नहीं हो रहा था।
0: राइट। तो फिर वो आई, उनको लगभग 9 सेशंस लगे और उसके बाद, मतलब उनकी एक टाइम पे तो ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहती थी, 15 दिन बाहर रहती थी, 15 दिन हॉस्पिटल 15 दिन बाहर, ये उनकी स्थिति थी। और वो जहाँ जहाँ दिखा सकती थी, भोपाल में, बाहर, उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस ये 9 सेशंस हुए और वो आई भी इसीलिए कि अब कुछ मेरे पास सोल्यूशन नहीं बचा है तो चलो ये भी ट्राई कर लो। उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बोला कि ट्राई करके देखो, और 9 सेशंस के बाद उनकी पूरी तकलीफ ठीक हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और वो इतनी प्रभावित हुई माइंड के पावर से कि उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। वो इंजीनियर थी, फिर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा और अब वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है।
1: अच्छा, गुड। मतलब ये एक जीवंत एग्जांपल।
0: उन्होंने मुझे बिफोर आफ्टर फोटो भी दिए थे। आप पहले के फोटो जो हैं और जो बाद के फोटो हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ शी इज एबल टू लिव हर लाइफ। और आप सोचिए ना, किसी को 24/7 सिर दुख रहा है तो वो कैसे काम करेंगे। फिर एक और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। एक और थी जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, और जब ये थेरेपी हुई, जिस दिन ख़त्म हुई उसके 3-4 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है।
1: गुड।
0: एंड उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे, IVF थे, IUI थे, वो भी कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे थे, और इसके बाद शी वॉज एबल टू कंसीव। तो माइंड का इतना पावर होता है। हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि मन में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी शक्ति है, पर जब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में ये देखा है अपने साथ और इतने लोग जो आते हैं, कि मन की क्या शक्ति होती है वो मुझे एक्चुअली सामने सेशंस में दिखाई देता है। कि ये सुनना अलग बात है और उसको जब एक्सपीरियंस करो तो समझ में आता है कि क्या पावर है हमारे मन का।
1: लोगों को इस चीज को लेके, ये जो ये समस्या है या इसका ट्रीटमेंट, दोनों की बताइएगा आप, कि कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो अगर हैं तो आम भ्रांतियां क्या हैं?
0: पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेके सबसे बड़े भ्रांति, सबसे बड़ा क्वेश्चन रादर ये होता है, उन्हें लगता है हम पास्ट लाइफ में तो अटक के नहीं रह जाएंगे।
1: हाँ, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा,
0: आज हम बैठे हैं और मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं याद करके आज भी रो रही हूँ। तो मैं क्या 15 साल की उम्र में अटक के तो नहीं रह गई? मैं फिजिकली तो यही हूँ। तो वैसे ही जो माइंड होता है वो थोड़ा और पीछे चला जाता है, पास्ट लाइफ में चला जाता है। तो उनका मन ही बस ट्रैवल कर रहा है, फिजिकली तो वो यही है, तो वो वापस फिजिकल बॉडी में ही आएंगे। तो पास्ट लाइफ में कोई भी अटक के इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता भी है कि आपका इमेजिनेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीलिंग पूरी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हो रही है, और सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता।
1: अच्छा,
0: इसलिए आप जब इसके थोड़ी और डिटेल में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, वो कभी कभी काम कर जाती है। क्यों काम करती है?
1: इसी का हिस्सा हो गई वो,
0: क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है वो अभी एक्चुअल में है, और वो उसको ले आता है फिर आपके जीवन में।
1: कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है।
0: हाँ,
1: रीजन ही निकाल पाता उसे होता अचानक। जैसे अपन एग्जांपल दें कि अभी मान लीजिए मुझे या आप में, हम दोनों में से किसी को थॉट आए कि मैंने तो ये इंटरव्यू पहले करा है या हम इसी तरह बैठे थे,
0: बिल्कुल
1: ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं सामान्यतः, सबके
0: साथ डेजा वू बोला जाता है।
1: हाँ, उसका आपने साइंटिफिक, हम तो ये मानते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है ये
0: जी,
1: ऐसी आता है। आज आपसे बात करने से ये बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा कुछ सभी के साथ होता है। जब मुझे लगता हुआ कि मेरे साथ होता है या हमारे सुनने वाले श्रोता को लगता है, शायद उनके साथ होता है अकेले
0: जी।
1: ठीक है, एक बार और, के जो श्रोता हमारे अभी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक को या अभी इसके